मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज़ पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। सुबह के 5:59 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के

0: निदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरूद्व भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए यशगान करें अपनी वसुंधरा मातृभूमि और सर्वेश्वर प्रभु का भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के माध्यम से। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

स्वदेश प्रेम, पारस्परिक एकता व गौरव को समेकित करती ये देशभक्ति रचना आप सुन रहे थे समूह स्वर में। लीजिए अब सुनिए सुरेश वाटकर के स्वर में ये साईं भजन।

अभी आपने सुनी ये साईं आराधना, गायक थे सुरेश वाटकर। आइए अब सुनते हैं उदय बाबा फकर की आवाज में आदिशक्ति कालिका माता की स्तुति।

माता कालिका की स्तुति आपने सुनी उदय बाबा फकर के स्वर में। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये भक्ति रचना।

श्री राम प्रभु की आराधना अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल की गाए साईनाथ बाबा की आरती के साथ।

अभी आप सुन रहे थे साईं बाबा की आरती। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी कार्यक्रम विवरण के पश्चात सुबह 6:35 पर किसान श्रोता सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम। विषय होगा डीजल की बचत क्यों और कैसे। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:40 पर। गायक होंगे ए हरिहरन, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा। चिंतन का प्रसारण किया जाएगा सुबह 6:50 पर। सुबह 7:20 पर हिंदी महक श्रृंखला में हम आपको सुनवाएंगे हिंदी काव्य पाठ। कवि होंगे पूरन चंद गुप्ता। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सुबह 7:30 पर। सुबह 8:48 पर सांध्यकालीन सभा में शाम 5:40 पर और रात्रि 8:15 पर। सुबह 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे धारावाहिक गीत गीता का तीसरा भाग। शीर्षक होगा कर्मयोग।

सुबह 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें कलाकार होंगे कल्लू सिंह घोषी और सुश्री हीरा कुशवाहा। बंजो पर होंगे राजा राम विश्वकर्मा, ढोलक पर साथ देंगे महेंद्र चढ़ार। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा सुबह 9:30 पर। आज की फिल्म होगी एक मुसाफिर।

0: एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा सुबह 9:30 पर। आज की फिल्म होगी एक मुसाफिर एक हसीना। प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:10 पर। इसमें आप सुनेंगे असमिया भाषा का गीत। गीतकार होंगे सतीश दास। श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप तक पहुंचेगा सुबह 10:30 पर। दिन में 1 बजे बहनों के लिए होगा कार्यक्रम महिला सभा। इसमें बहनें सुनेंगी वार्ता और उपयोगी जानकारी। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युवा साथियों के लिए प्रसारित होगा युववाणी कार्यक्रम। आकर्षण रहेगा कार्यक्रम युवा चौपाल। आलेख खुर्शीद अहमद खान का होगा। प्रतिभागी होंगे अभिदीप सुहाने, शिवांगी तिवारी, अनुपम खरे, विश्वास तिवारी, सौम्या शर्मा और अभिषेक मिश्रा। इसके साथ आपको मिलेगी रोजगार सूचना। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। लोकधारा कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 6:30 पर। कलाकार होंगे किशन प्रसाद रैकवार। ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसमें सुनिए धारावाहिक अटकन चटकन। इसके अलावा सुनेंगे वार्ता बुंदेलखंड क्षेत्र में आधुनिक फल उत्पादन तकनीक। वार्ताकार होंगे विजेंद्र कुमार सिंह। इसके अलावा आप सुनिए आज की नसीहत। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारण होगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन आप सुनेंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुबह 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:30 पर। संग्रहालय से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 12:30 पर। लोक संगीत के लिए नियत समय होगा दिन में 1:30 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे दिन में 1:45 पर। दोपहर 2 बजे होगा फिल्म संगीत। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं के लिए खेती किसानी कार्यक्रम।
1: किसान भैया देखो आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं कि अपन डीजल की बचत कैसे करें। भैया आजकल अपन ने देखे हुए कि अगर अपन सब जने मिलके कोनो भी काम करें तो वो संभव है, और अकेले सोचें कि इतने से का होत है तो वो नुकसान ज्यादा हो जाते हैं। अब अपन ने देखे हुए कि थोड़ी थोड़ी सी गलती अपनी कहूं कहूं बहुत बड़ी गलती बन जाती। जैसे मान लो अपन डीजल का उपयोग कर रहे, अपन ने देखे हुए कि जहां से अपनी टंकी से डीजल अपने मेन इंजन में जाते है उते पे जो सटक लगी रात है उनमें से कभू कभू तेल को रिसाव होने लगत है। अब वो भैया जो तेल कहीं लगत के बूंद बूंद से घट भरे, तो जो भैया अगर अपनो तेल थोड़ी थोड़ी लीक करो धरती में गिरो अपन ने किया वो कौन ज्यादा गिर रहो, तो ब भैया थोड़ी थोड़ी एक एक बूंद गिर के और बहुत ज्यादा अपनी राष्ट्रीय नुकसान भी हो सकते है। कैसे जब सबके ट्रैक्टर से और इंजन से इतना तेल गिरे तो निश्चित है कि भैया थोड़ी थोड़ी करके वो बिलाद गिरे, और जब कोनो चीज ज्यादा नुकसान होते तो वह अपने देश के लाने अपनी राष्ट्रीय नुकसान के रूप में देखी जाते है। अगर ऊखा अपन अच्छी तरह से सुरक्षित कर लें, उनमें जो यंत्र बदलवे लायक हो वो बदल लें, अगर उनकी नली सटक कहूं से भी जो है तेल की एक भी बूंद

0: गिर रही तो तत्काल उनकी सुरक्षा की ओर अपन ध्यान दें तो निश्चित है कि अपन डीजल की बचत सोई कर सकते हैं। तो देखो भैया अपन बातचीत करत में भी अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करने रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं, इसे डीजल को नुकसान होते हैं। अब सभी पंच भैया अगर ऐसा करें तो कितनों डीजल अपनो नुकसान होते हैं और एक जनन की बचत धीरे धीरे बहुत बड़ी बचत भी हो सकत है सब जने उनको अनुकरण अगर करें तो। और ई के लाने अपन अपन ने देखो हुए कि बे सभी किसान पंच जो उनके आजकल डीजल इंजन को उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर हैं, सिंचाई पंप हैं और भी अपने बखराई जुताई सिंचाई कढ़ाई मड़ाई जो सभी काम हैं वे आजकल कृषि यंत्रण से होने लगे हैं और जिनके लाने ऊर्जा के रूप में अपन डीजल का उपयोग करते हैं। तो जब सभी कृषि यंत्र डीजल से अपन चलाऊ थे तो उमे अपन बचत के लाने जब ही ध्यान दे सकते हैं जबकि अपन अच्छे किस्म के कृषि यंत्रण को रख रखाव करें और उनको उपयोग करें। ई के लाने हम अपन खा आज बता रहे हैं कि ट्रैक्टर चलाउती बेरा सोई अपन कछु खास बातन को ध्यान रखने पर है। अब जैसे ट्रैक्टर है अपनो सेल्फ स्टार्ट राखें तो जब अपन खा जरूरत हुए तब अपन उखा बंद कर सकत और जब जरूरत हुए तब उखा चालू कर सकत। इसे भी है जो अपन फालतू समय में ट्रैक्टर चलाउत रात और उसे डीजल को नुकसान हो तो ऊ की बचत अपन कर सकते हैं। एक बात भी है ट्रैक्टर के लाने हम इतने अपन जाओ और बताए कि ट्रैक्टर का निर्धारित गति सीमा जो अनु की है ऊ में चलाएं, ना बहुत तेज चलावें और ना बहुत धीमो, इसे भी अपन डीजल की बचत कर सकते हो। और ट्रैक्टर में जो गियर होते ना भैया वे जोन भी गियर है तो जोन गियर की जहां जरूरत है वही गियर में अपन ट्रैक्टर खे चलाने हैं तो इसे का हुए कि फालतू जो डीजल अपनो बर्बाद होते वो भी न हुए। ट्रैक्टर में और भी तमाम प्रकार के आयल जो डरत हैं उनकी समय समय पे अपन जांच करत रहे देखत रहे कैसे कि जब आयलिंग और भी उनके सहायक जो कील पुर्जा है उनमें सही हुए तो अपनो इंजन भी सही काम करे। ट्रैक्टर में ग्रीसिंग भी रखे ई के लाने उके सभी कील पुर्जा अच्छे काम कर रहे। ट्रैक्टर में जो सहयोगी कृषि यंत्र हैं जैसे अब अपन ठिलिया से मान लो कुछ काम कर रहे तो ठिलिया के जो पहिया है उनकी बेरिंग उनकी ग्रीसिंग और उनके घूमबे की जो क्षमता है उसकी समय समय पे सही जांच अपन का कर लेने हैं। अगर वह सही काम कर रहे तो निश्चित है कि अपना ट्रैक्टर जो है कम डीजल में ज्यादा काम अपनो कर सकते है। ऐसे भैया अपने कछु पंच जो डीजल पंपिंग सेट को उपयोग करते हैं तो उनका भी वो पंपिंग सेट के जो नोजल हैं प्लंजर हैं और जो अन्य उके जो पुर्जा हैं उनकी अपन का जांच कर लेने हैं। और भी ये इंजन में देखें कि अगर कहूं कच्चो धुआं वो फेंक रहो है तो जो मान के चलो कि अपनो इंजन जो है ज्यादा डीजल खा रहो है और अपन खा ऊ बेरा अपने इंजन की मैकेनिक से अच्छी तरह से जांच करा लेने हैं उखा दिखा लेने हैं और ऊ के जो सही अच्छे कील पुर्जा हैं उनका बदलवा डालने ऊको जो एयर क्लीनर है उखा अच्छी तरह से साफ रखने हैं उसे भी जो है भैया अपनो जो है जब सही हवा ऊ में जहे तो उकी कार्य क्षमता बढ़ जाए और उको फायदा अपन खा डीजल के रूप में मिलत रहने। अगर कहूं अपन ने हमारी बताई भाई इन बातन का ध्यान में रखें अपने कृषि यंत्रण को रख रखाव करो तो निश्चित है कि डीजल की एक एक बूंद बचा के अपन अपने देश के लाने डीजल की काफी मात्रा में बचत कर सकते हैं।
1: अभी किसान श्रोताओं के लिए खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। इसके अंतर्गत किसान श्रोताओं ने जाना डीजल की बचत क्यों और कैसे संबंधी कुछ उपाय और सुझाव के बारे में। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि

वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हुआया और इनकी टाएं टाएं सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक थे ए हरिहरन, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब करते हैं वैचारिक मंथन आज के चिंतन के द्वारा।
1: आज का वर्तमान युग प्रतियोगिता का है, जद्दोजहद का है, ऐसी प्रतियोगिता जिसमें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करना पड़ता है। और अब तो ये स्थिति बन चुकी है कि औसत प्रतिभा का भी उतना महत्व नहीं है। लाखों की भीड़ में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करना एक कठिन कार्य है। औसत से प्रारंभ होकर सर्वश्रेष्ठ के बीच के फासले को तय करना संघर्ष है। संसार में महान उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति अथक संघर्षों से ही बनते हैं।

0: मोहनदास करमचंद गांधी से बैरिस्टर गांधी और फिर महात्मा गांधी से बापू बनने का चक्र संघर्ष का ही परिणाम है। गांधी जी ने कहा है, संघर्षों से ही जीवन में नए रास्ते प्राप्त होते हैं। इस बारे में महत्वपूर्ण तथ्य काफी उत्सुकता पैदा करता है कि सृष्टि की रचना ही शताब्दियों के संघर्ष का परिणाम है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी जबरदस्त संघर्ष का ही परिणाम है। चंद्रमा पर कदम रखना, हिमालय की चोटी पर पहुंचना, मंगल ग्रह पर पहुंचना, कठिनतम कार्य निरंतर संघर्ष का परिणाम है। मनुष्य जीवन में चलने वाला अनवरत संघर्ष सफल एवं विकासशील मनुष्य की भूमिका तैयार करता है। यदि संपूर्ण जीवन से संघर्ष और सफलता को पृथक कर दिया जाए तो चाहत, आरजू, तमन्ना, इच्छा आदि शब्द स्वतः ही अस्तित्वहीन हो जाएंगे। अर्थात इच्छा की सार्थकता निर्विवाद रूप से संघर्ष में है। आदि मानव जहां भोजन के लिए संघर्ष करता था, वहीं आज गरीब व्यक्ति सामान्य सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष में लगा रहता है। उच्च वर्ग सम्मान पाने के लिए संघर्ष करता है तो साधु कल्याण के लिए संघर्ष कर रहा है। किसी कवि ने कहा है, वो पथ क्या यदि पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। अर्थात संघर्षशील व्यक्ति सदैव सकारात्मक सोच लिए रहता है। वो सदैव ये मानता है कि हालात कभी तो बदलेंगे और यही उम्मीद संघर्ष करते उसे एक दिन मंजिल तक पहुंचा देती है। देश को समृद्ध शक्तिशाली बनाने वाला किसान अपने खेत में खेत तैयार करने से फसल घर तक आने तक, मूर्तिकार मूर्ति को अंतिम रूप न देने तक, कारीगर वस्तु को स्वरूप न देने तक तन मन और धन से अथक संघर्ष करता रहता है। और संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होने पर उसे एक ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है। सहज सुख की प्राप्ति से नवीन रास्ते नहीं मिलते, संघर्ष से ही नवीन रास्ते प्राप्त होते हैं। कहा गया है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तब ऐसी स्थिति में संघर्ष को आविष्कार का पिता माना जाना चाहिए, क्योंकि बिना अथक संघर्ष के कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि सफलता का मूल मंत्र अथक संघर्ष है और बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को सदैव सकारात्मक धारणा के साथ संघर्षशील रहना चाहिए। आज के युग में युवा पीढ़ी बिना संघर्ष के ही सब कुछ पा लेना चाहती है। ऐसी सोच रखना अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि बिना संघर्ष इस जीवन में कुछ भी नहीं पाया जा सकता। इसलिए उठो, जागो और संघर्ष करो, तभी आपको सफलता मिलेगी और तभी आप मंजिल पा सकोगे।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मंत्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीयदिनांके राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरण विषये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत्।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पानी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं।

0: इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों की प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the subdivisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान नहीं होगी वाहन रैली, कारकेड भी छोटा रहेगा। आज प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे 1,835 करोड़ रूपए। प्रदेश में 1,84,00,000 से अधिक मकानों की गणना पूर्ण और प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी। आज

0: बारह जिलों में लूक अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अपने स्थानीय दौरों के दौरान काफिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री और नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों की वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर लिया है। राज्य शासन द्वारा कल जारी आदेश में कहा गया है कि ईंधन की बचत और सादगी को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी न्यूनतम वाहनों के उपयोग की अपील की है। साथ ही आम लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने का आग्रह किया है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और यह सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। उन्होंने कहा कि भारत की तेल कंपनियों को हर दिन लगभग 1000 करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है और कुल नुकसान करीब 1,98,000 करोड़ रूपये तक पहुंच सकता है।
1: एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36 हजार से बढ़ाकर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कल फ्रांस के राजदूत थियरी माथू सहित इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्टे के प्रतिनिधियों ने भेंट की। इस अवसर पर फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांस की ओर से अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। कॉन्क्लेव में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में फ्रांस की कंपनियों और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन सहित 8 अभिरुचि पत्र लेटर ऑफ इंटेंट प्रस्तुत किए गए। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनंतिम अनुमानों और चौथी तिमाही के जीडीपी के त्रैमासिक अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान 12 मई से 21 जून तक प्रदेश भर में संचालित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल आयुष विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी योग प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि
2: शरीर में योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं। आयुष विभाग निर्देश सरकार द्वारा हर घर योग अपनाने के लिए घर घर योग, योग शिक्षक, चिकित्सालय, कॉलेज, स्कूल प्रदेश भर में लगने वाले हैं। इस दृष्टि से योग सखी, योग दूत इत्यादि प्रकार के कई समूह बना करके इस पे काम करने का निर्णय किया है। इससे आगामी 21 जून तक ये अभियान चला करके योग से बाकी कई सारे लोगों को जोड़ने का अभियान चल रहा है।
0: अब समाचार में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और

0: नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को महत्व देना पड़ेगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य जारी है। इस अभियान में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान, परिवार एवं अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। सचिव गृह विभाग और नोडल अधिकारी जनगणना शिल्पा गुप्ता ने बताया कि राज्य में जनगणना कार्य के लिए 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें प्रगणकों द्वारा व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्रित की जा रही है। 12 मई तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1,84,92,860 मकानों की गणना पूर्ण की जा चुकी है। रायसेन जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खाते में 1,835,67,00,000 रूपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जून 2023 में शुरू की गई थी। इसमें अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में 55,926 करोड़ रूपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा की जा चुकी है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर ई रमेश कुमार ने बताया कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 में 4,000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सैन्य बलों में भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में कार्य कर अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की कल समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने चयनित 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास बनाने संबंधी सभी निर्माण कार्य 30 जून तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर के कुलो नेशनल पार्क में मादा चीता केजीपी 12 के 4 शावक कल सुबह एक मान के पास मृत पाए गए हैं। शावकों का जन्म 11 अप्रैल को खुले जंगल में हुआ था। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और सामान्य स्थिति में है। कुलो में मौजूद अन्य सभी चीते भी स्वस्थ हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आज इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 11 जिले लू की चपेट में रहेंगे। मौसम केंद्र ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। कल कई जिले लू की चपेट में रहे। वहीं निमाड़ में तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर और झाबुआ सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज रीवा में वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक और रचनात्मक अनुप्रयोग विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। डिंडोरी जिले के शाहपुरा में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 200 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। शासकीय राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पब्लिक विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर छोटी बेटमा इंदौर में खेल विभाग के लिए 200 सीटें स्वीकृत की गई है। इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन एवं चयन प्रक्रिया शारीरिक परीक्षण एवं बैटरी टेस्ट 15 जून तक क्रीड़ा परिसर में होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर।

0: और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी महक। आज इस श्रृंखला में हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी काव्य पाठ। कवि हैं पूरन चंद गुप्ता। तो आइए सुने इनसे इनकी काव्य रचनाएं।
1: साहित्य और समाज के संबंध में मुक्तक प्रस्तुत है। है साहित्य समाज का दर्पण, जीवन पथ दिखलाता है। होता जब जैसा समाज में भला बुरा समझाता है। गांव नगर या राज देश में होते जो परिवर्तन है, तभी साहित्यकार उन्हीं पर अपनी कलम चलाता है। जाति धर्म भाषा शैली में रीति रिवाज जहाँ जैसा, शासन सत्ता का परिचालन करत समाज जहाँ तैसा। चली आ रही आदिकाल से जनमानस में परिपाटी, लिखे ग्रंथ तब उसी समय ही था समाज तब वो वैसा। पढ़ता साहित्य पर प्रभाव भी समय समाज परिस्थिति का, रुचि प्रवृत्ति साहित्यकार की समझ राज उस स्थिति का। सामाजिक परिदृश्य देखता रखता ध्यान सभी का, जो मान शान अरु परंपरा में जिंदगी की संस्कृति का। वेद पुराण महाभारत लिख रामायण की गाथाएं, व्यास वाल्मीकि तुलसीदास शूर कबीर की शिक्षाएं। साहित्य से भी मिलती शिक्षा समाज जिसको अपनाता, पूरन समाज अरु साहित्य की बनी हुई है प्रथाएं। इसी क्रम में आंखें देखिए, आप आंखें कितनी प्रकार की कैसी कैसी होती हैं, तो देखिए आंखों से नजारा होता है, आंखों में सितारा होता है। आंखों का देखो ये कमाल, आंखों से हंसता रोता है। आंखों में पानी आता है, आंखों से पानी जाता है। आंखों से लगता जग अपना, हर आंख में सपना सोता है। आंखें ये नशीली होती हैं, आंखें ही रसीली होती हैं। आंखें आंखों से मिलती हैं, आंखें शर्मीली होती हैं। आंखें जो इशारा करती हैं, आंखें ही आंसू भरती हैं। आंखें आंखों पर मरती हैं, आंखें भल मिला ले कोई, आंखें आंखों से जलती हैं। आंखें थक कर जब सोती हैं, आंखें अपना सब खोती हैं। आंखें ही देख तरसती हैं, आंखें ही लखे बरसती हैं। आंखें ये कभी फड़कती हैं, आंखें ही बहुत सिसकती हैं। आंखों में लोभ झलकता है, आंखें ही मोह बसाती हैं। आंखें अधिकार जमाती हैं, आंखें ही अहम दिखाती हैं। आंखें चुप के आ जाती हैं, आंखें चश्मा चढ़वाती हैं। आंखें ही पुण्य कमाती हैं, आंखें जब धुंधलाती, आंखें जब ही धुंधलाती हैं, आंखें तब नई बनवाती हैं। आंखें ही जीवन दर्पण हैं, आंखें करती समर्पण हैं। आंखन में बसते प्रियतम जब, आंखें आंखन में अर्पण हैं। आंखें ही मिलती खुलती हैं, आंखें ही मिचती खुलती हैं। आंखें ले करुणा फिरती हैं, आंखें निज पीड़ा सहती हैं, आंखें ही पीड़ा हरती हैं। आंखें प्रभुस्मरण करती हैं, आंखें मन मूरत धरती हैं। पूरन आंखें जो दान कर, आंखें कल्याणी फरती हैं। अब एक देखिए आप, बुंदेली गाथा है। बुंदेली बुंदेलखंड की गाथा बड़ी पुरानी है, भाषा साहित्य कल

0: की बनी निशानी है, वीरों की धरती है। ये अपने साहस और वीरता की लड़ी लड़ाई आजादी की, पौरषशील धीरता की, छत्रसाल झांसी की रानी इनकी अजब कहानी है। बुंदेली बुंदेलखंड की गाथा बड़ी पुरानी है। नदी बेत बाधाम और छा बैठे जहाँ राम राजा, मधुकर साहे गणेशी बाई नाम हर दौल का साजा। बरुआ सागर अरकुंडेश्वर की महिमा बड़ी सुहानी है। बुंदेली बुंदेलखंड की गाथा बड़ी पुरानी है। पन्ना में खदान हीरा की, खजुराहो कला की खान, चित्रकूट में राम पधारे किया पुराणों में बखान। आला उदल बड़े लड़ैया जन्म महोबा जानी है। बुंदेली बुंदेलखंड की गाथा बड़ी पुरानी है। सोना गिर देवगढ़ पपोरा सिद्ध क्षेत्र माने जाते, तुलसी व्यासी श्री केशव जगनिक में थेली जगाते। पूरन है अद्भुत प्रदेशी है, कहीं न इसकी सानी है। बुंदेली बुंदेलखंड की गाथा बड़ी पुरानी है। बुंदेली बुंदेलखंड की गाथा बड़ी पुरानी है। और इसी संबंध में एक चाबी आपको हम दे रहे हैं। हो चाबी चाबी चाबी जा कविता की चाबी, कविता है कवियों की चाबी, कवि कविता की चाबी। शब्दों की जा अद्भुत चाबी, बन भावों की चाबी। छंद शोर था अरु चौकड़िया, छंद शोर था अरु चौकड़िया, दोहा मुक्तक चाबी। करुणा ओजहास की चाबी, कहीं व्यंग की चाबी। हाँ चाबी चाबी चाबी गीत गजल की चाबी, कविता बनी मंच की चाबी, कवि सम्मेलन चाबी। हर्षित करती मन की चाबी, कभी रुलाती चाबी। प्रीति नीति की पाठ पढ़ाती, प्रीति नीति का पाठ पढ़ाती, ताली बजाती चाबी। पुस्तक ग्रंथ रचाती चाबी, नाम कमाती चाबी। हाँ चाबी चाबी चाबी काम बनाती चाबी। और जहाँ न पहुँचे रवि की चाबी, पहुँचत कवि की चाबी। सूरज बना जगत की चाबी, कवि सूरज की चाबी। है साहित्य समाज का दर्पण, राह बताती चाबी। पूरन तुलसी सूर कबीरा, शरण मैथिली चाबी। हाँ चाबी चाबी चाबी गीता रूपी चाबी।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक स्तंभ के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ। कवि थे पूरन चंद गुप्ता। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुने फिल्म संगीत।

0: जिंदगी का फलसफा व्यक्त करता ये गीत आपने सुना फिल्म काला पत्थर से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। साहिर की शब्द रचना को संगीत से सवारा था संगीतकार राजेश रोशन ने।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, उसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए अब सुनिए एक नजर इस फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म एक नजर में। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: लीजिए अब सुनिए द ट्रेन, इस फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना लता मंगेशकर के स्वर में। आरडी बर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था फिल्म द ट्रेन के लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत फिल्म सिलसिला से, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। हसन कमाल के लिखे गीत को संगीत से सवारा है शिव हरी ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म मोहब्बत में। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है संगीतकार बप्पी लहरी ने।

फिल्म संगीत के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में संतोष आनंद की गीत रचना। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म प्रेम रोग।

0: सुरेश वाडकर के गाए प्रेम रोग फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रतीक्षा कीजिए समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्रवर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन

0: आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किये। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल

0: में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समेट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting.

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है धारावाहिक गीत गीता। आज इस धारावाहिक का हम आपको सुनवा रहे हैं तीसरा भाग। शीर्षक है कर्मयोग। तो आइए सुने ये धारावाहिक।
1: ज्ञान योग की श्रेष्ठता और समक्ष उपस्थित घोर कर्म के बीच असमता अर्जुन के अगले प्रश्न का आधार है। इन दोनों मार्गों में सामंजस्य स्थापित करता श्री कृष्ण के द्वारा कर्मयोग का उपदेश। प्रस्तुत है तृतीय अध्याय।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गीता का भाग 3। शीर्षक था कर्मयोग। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुने फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म गैम्बलर में। लीजिए आप सुनिए अमित कुमार के स्वर में फिल्म तेरी कसम का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले कार्यक्रम की।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। इस समय आप सुनते हैं लोक संस्कृति का विविध रंगी कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं कल्लू सिंह घोषी और सुश्री हीरा कुशवाहा। सबसे पहले इनसे सुनते हैं ये युगल गीत।

0: अभी आपने सुना ये साक्षरता गीत कल्लू सिंह घोषी के स्वर में। हम आपको बता दें आज इस कार्यक्रम में बेंजो पर हैं राजा राम विश्वकर्मा और ढोलक पर साथ दे रहे हैं महेंद्र चढ़ार। कार्यक्रम की पूर्व उद्घोषणा पर अमल करते हुए अब आपको सुनवा रहे हैं कल्लू सिंह घोषी और सुश्री हीरा कुशवाहा के स्वर में ये युगल गीत, लेकिन उससे पहले ये अल्प विराम।
1: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
2: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
1: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
2: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए अब सुनिए एक और युगल गीत नशा निषेध विषय पर, कल्लू सिंह घोषी और सुश्री हीरा कुशवाहा के युगल स्वर में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए आप सुनिए, ये ढीमरियाई। गायक कलाकार हैं कल्लू सिंह घोषी।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: लीजिए आप सुनिए ये भजन, गायक हैं कल्लू सिंह घोषी।
3: कारी धोती लंबो पना, अरे कारी धोती लंबो पना, वो छोटे कारे

अभी आप सुन रहे थे ये गीत रचना कल्लू सिंह घोषी के स्वर में। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे कल्लू सिंह घोषी और सुश्री हीरा कुशवाहा। बेंजो पर साथ में थे राजा राम विश्वकर्मा। ढोलक पर साथ दे रहे थे महेंद्र चढ़ार। इसी लोक रचना के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। तो चर्चा करेंगे इस फिल्म के बारे में और साथ ही सुनवाएंगे इस फिल्म के गीत। श्रोताओं, आपने कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा कि पुरानी फिल्मों और पुराने गीतों की बात ही अलग है, और आज हम बात कर रहे हैं 1962 में आई एक ऐसी ही फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना की और उसके मधुर गीतों की। इस फिल्म की खासियत श्रोताओं ये रही कि इसके गीत, कहानी और कलाकार सभी सराहनीय और लोकप्रिय रहे। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई जॉय मुखर्जी और साधना जी ने। कार्यक्रम में और बातें भी होंगी, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना जो हमारे मन को आशा और उमंग से भर देता है। और जब भी किसी के जीवन में किसी ऐसे रहनुमा की दस्तक होती है जो हमारे सपनों और खुशियों में रंग भर देता है, तो आज भी हमारे मन में ये गीत दस्तक देता है और आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है और हमारी खुशी को एक नया और सुंदर रूप प्रदान करता है। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से। इसे लिखा था SH बिहारी ने, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की और संगीत ओपी नैयर का था। श्रोताओं, हम आपको बता दें इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन राज खोसला का है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक फौजी अजय मेहरा यानी जॉय मुखर्जी एक मिशन पर कश्मीर आता है और कबीले वालों से आशा यानी साधना को बचाता है, लेकिन हमले में अपनी याददाश्त खो बैठता है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि अजय आशा को पसंद करने लगता है और उसे प्रेम करने लगता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो पूर्व से ही विवाहित है। इस बात से अजय काफी परेशान होता है। बातें कुछ और भी होंगी। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। आवाज मोहम्मद रफी की, गीत एक बार फिर SH बिहारी का।

जी हाँ श्रोताओ, इस गीत को सुनकर हमारे मन में यही ख्याल आता है कि जब हम किसी को अपना मानते हैं तो इसकी झलक हमारे मन से होते हुए हमारे चेहरे और हमारी आंखों के जरिए हमारे अपनों तक पहुंच ही जाती है। और कहा भी गया है कि बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता। ये गीत अभी आपने सुना SH बिहारी का लिखा हुआ, धुन बनाई थी OP नैयर ने, आवाज मोहम्मद रफी की थी और फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी आपको हर पल बांध कर रखती है क्योंकि उसमें नए नए ट्विस्ट और टर्न आते ही रहते हैं। कुछ समय बाद आशा अजय को बताती है कि दरअसल उसकी शादी तो हुई ही नहीं क्योंकि ना फेरे हुए और ना ही कन्यादान। इसी बीच अजय का एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, लेकिन इसके चलते अजय दोनों एक्सीडेंट के बीच की 6 महीने की दौरान हुई सारी बातों को भूल जाता है और ये सिचुएशन फिल्म को और भी रोचक बना देती है। इसी रोचकता के साथ कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। गीत के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने, तर्ज OP नैयर की।

जी हाँ श्रोताओ, प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिनों दिन एक बेल की तरह फलती फूलती है और इसमें प्रेम की मिठास और शिकायत की उलझनों की प्यारी सी खटास से ये भरी होती है जो निरंतर गहरी होती जाती है। प्रेम एक ऐसी धारा है जो अविरल बहती है और इसके चलते हमारे जीवन की खूबसूरती को और भी निखार देती है। इसमें जीवन के दो धारे एक साथ जीवन का सफर तय करते हैं और अपने सपनों अपने वादों के साथ। श्रोताओं, 1962 में रिलीज हुई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना एक क्लासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म सस्पेंस और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण है जो जॉय मुखर्जी और साधना की जोड़ी कश्मीर के खूबसूरत नजारों के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म में कुल 10 गीत लिखे गए जिन्हें लिखा गीतकार एसएच बिहारी, शिवान रिजवी और राजा मेहंदी अली खान जैसे चुनिंदा और मशहूर कुशल गीतकारों ने। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ और सुनते हैं ये गीत।

श्रोता कहते हैं कि प्रेम की डगर जितनी खुशनुमा होती है उतनी ही चुनौतियों से भी भरी होती है। यही वजह है कि हर किसी का ये सफर मुकम्मल नहीं होता, लेकिन जीवन में यादों की विरासत और धरोहर भरपूर होती है। श्रोता, ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म रैंडम हार्वेस्ट से प्रेरित है। हम आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म का बजट रहा 4.25 करोड़। भारत में बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन हुआ 4.64 करोड़ और कुल कलेक्शन रहा विश्व पटल पर 6.88 करोड़। इस लिहाज से इस फिल्म को श्रेष्ठ फिल्म में रखा जाना मुनासिब होगा। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए इसी युगल गीत के साथ जिसे आपने सुना, एक मुसाफिर एक हसीना। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और संगीतकार थे ओपी नैयर। श्रोताओं, साथ जब लंबा होता है तो प्रेम और अपनेपन की डोर से आखिरकार बंध ही जाता है, और हमारे व आपके बीच स्नेह की डोर यूं ही बंधी रहे, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, इसी यकीन और शुभेच्छा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी मित्र उर्मिला यादव को। नमस्कार। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है प्रतीक्षा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी की।

अनूपपुर जिले में मानव और हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा गजरक्षक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसके माध्यम से अब ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। वन मंडलाधिकारी डेविड वेंकटराव चनाप ने बताया कि यह ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन और उनके व्यवहार की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों और उनके जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे ही हाथी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, यह ऐप वनकर्मियों और क्षेत्र के पंजीकृत ग्रामीणों को SMS, वॉयस कॉल और सायरन के माध्यम से तत्काल सचेत कर देगा। जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसी उद्देश्य से जिले में मई माह में 2400 घंटे सुमन हेल्प डेस्क एवं इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को हर समय त्वरित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में घर घर जनगणना कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हर्षल पंचोली ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 शिक्षकों की 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन 18 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जनजाति युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा और शोध के अवसर प्रदान करना है। जिले में गेहूं की खरीदी जारी है। जिले में 15 अप्रैल से शुरू हुई उपार्जन प्रक्रिया के तहत अब तक 355 किसानों से 971 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए कुल 1367 किसानों ने पंजीयन कराया है। अनूपपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगा दी गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जनजातीय कार्य विभाग के नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज विशेष सुनवाई शिविर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों के लंबित पेंशन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, एरियर एवं GPF भुगतान जैसे प्रकरणों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर के दौरान विशेष रूप से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित भुगतान प्रकरणों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकास खंड कोतमा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया कला के प्रगतिशील किसान तारन सिंह ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। वे वर्षों से पारंपरिक रोपाई विधि से धान की खेती करते थे। वर्ष 2024-25 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किसान मेले में उन्होंने धान की सीधी बुवाई DSR तकनीक की जानकारी प्राप्त की और अपने खेत में सीड ड्रिल मशीन द्वारा धान की बुवाई कराई। जहां पारंपरिक रोपाई में प्रति हेक्टेयर लगभग 12,000 से 15,000 रुपए तक का खर्च आता था, वहीं सीधी बुवाई में यह लागत बहुत कम होकर लगभग 1,200 रुपए प्रति हेक्टेयर रह गई। जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के नव निर्मित क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने ICU कक्ष, नेत्र कक्ष, बेड की उपलब्धता एवं चिकित्सा उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों से मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जिले के सभी

अधिकृत अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अनूपपुर में 3 मतदान केंद्र और कोतमा व राजेंद्रग्राम में 1-1 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चुनाव में 122 प्रत्याशियों में से मतदाताओं ने अपनी अपनी पसंद के 22 सदस्यों का चुनाव किया। अनूपपुर जिला न्यायालय में 302 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ संतोष सिंह परिहार ने बताया कि मतदान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। विगत दिनों जिले के क्षत्रिय समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान कोतमा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण समाज ने जैतहरी अनूपपुर अमरकंटक में शोभा यात्रा निकालकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अनूपपुर जिले की चिट्ठी।

0: प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। आज इस कार्यक्रम का हम आपको सुना रहे हैं भाग 5।
1: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। श्रोताओं, आप जानते हैं यह कार्यक्रम हम प्रति बुधवार इसी समय आपके रेडियो सेट पर लेकर आते हैं, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रहते हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार जी, जो कि भोपाल के जाने माने सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन्स रोग के विशेषज्ञ हैं। तो आइए आज फिर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और सर का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। हमारे श्रोताओं ने एक सवाल हमसे पूछा है, डायबिटिक फूड क्या है?
2: बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि बगैर चक्के के तो गाड़ी नहीं चल सकती
1: जी,
2: वैसे ही बगैर पैरों के इंसान अपने जीवन के नित्य कर्म नहीं कर सकता, अपने कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। क्या होता है कि मधुमेह में बहुत सालों से अनियंत्रित मधुमेह में पैरों की नसों में सुन्नपन आने लगता है। इसके साथ साथ जो पैरों की शुद्ध खून वाली धमनियां होती हैं, उनमें रुकावट आने लगती है, जिसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं। सुन्नपन आ गया तो कटा फटा आपको समझ में नहीं आएगा, काटा गड़ा कि कांच लगा। आप नंगे पैर घूमते हैं, अपने पैरों का ध्यान नहीं रखते, घाव बनने लगता है और खून की धमनियों से पोषक तत्व और ताजा खून नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो भी घाव को और बढ़ाता है। उसके ऊपर फिर बाहर से आपने साफ सफाई नहीं रखी, आप जागरूक नहीं है, इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन भी मधुमेह में बहुत बुरी चीज है, क्योंकि कीटाणुओं को बहुत शक्कर बड़ी होती है, तो खूब खाने पीने मिलता है। खून का दौरा भी कम है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, विकट बात है। उसके साथ साथ नसों का सुन्नपन, तो सारी जो बचाव की प्रणाली होती है वो ध्वस्त हो जाती है और पैर फिर कटने की नौबत आती है। अगर गैंग्रीन बन गया तो कई बार ड्राई गैंग्रीन बनता है, तो पैर सूख कर उंगली गिर जाती है, या तो बेड गैंग्रीन हुआ, या फिर हड्डियों में इन्फेक्शन चला गया जिसको ऑस्टियोमायलिटिस कहते हैं। तब तो आपको एम्पुटेशन कराना पड़ता है, माने उस भाग पैर का भाग काटना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विकट परिस्थिति है।
1: सर ये वाकई बड़ी भयानक स्थिति है, और इसका अगर हम इलाज की बात करें तो क्या संभव है इलाज इसका?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बचाव ही इलाज है, प्रिवेंशन इज द बेटर क्योर
1: जी।
2: सबसे पहले अपना शुगर नियंत्रित करें, जागरूक रहें। आपको एक अच्छा हार्मोन का विशेषज्ञ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये बताएगा कि पैरों की कैसे देखभाल करनी है। नंगे पैर नहीं चलना है, नहाते समय पैरों के तलवे देखने हैं, कुछ कटा फटा हो तो उसका इलाज होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है, जिसको भी डायबिटीज है, वो नहाने के बाद पैर सुखाने के बाद उसमें नारियल का तेल लगाए, इमोलियंट क्रीम, मॉइस्चराइजर जो आपको पसंद है वो लगाए। नंगे पैर घर पर ना चले, बाहर जूते जैसा पहने। मंदिर मस्जिदों में आप जाते हैं तो उपासना जरूर करिए, पर दिन के सुबह सुबह जाइए। दिन चढ़ने पर जाएंगे तो गर्मी के समय में आप पैदल नंगे पैर निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं पैरों में फफोले आ जाएंगे, घाव बन जाएगा, चोट लग जाएगी। एक्यूप्रेशर वाले पार्क भी बहुत होते हैं, तो मरीजों को बहुत आकर्षित करते हैं कि भाई एक्यूप्रेशर वाले पार्क हम चलेंगे तो हमारा मधुमेह बहुत अच्छा हो जाएगा। पर मधुमेह के मरीजों को नंगा पैर नंगे पैर चलना एक अपराध की तरह मैं मानूंगा।
1: सर डायबिटिक फूड हो रहा है, इसके प्रारंभिक लक्षणों को हम कैसे जाने?
2: देखिए, जब भी मरीज हमारे पास इलाज के लिए आता है जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई आपकी हम आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें देखेंगे। इसको कहते हैं डायबिटिक फूड स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। जहां हमें लगता है कि सेंसेशंस की कमी है, त्वचा ऐसी है कि हमें जो झुंझुनी हम महसूस करवा रहे हैं वो नहीं महसूस हो रही है, तब हम डॉपलर और बाकी सब चीजें करते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस देखते हैं और उसके हिसाब से तय करते हैं कि बीमारी की सीवियरिटी कितनी है।
1: अब हम यही कहेंगे सर कि ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो, उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: उसके लिए तो यही है कि आप जब भी मधुमेह के मरीज हैं, आप साल में एक बार अपने डॉक्टर से पैरों की जांच करवाइए। वो बता दें कि पैरों में सुन्नपन है, जो कि प्रायः बहुत मरीजों में होता है। तो जो मैंने शुरू में बचाव बताए हैं, नंगे पैर मत घूमिए, पैरों का नहाते समय ध्यान दीजिए, इमोलियंट क्रीम मॉइस्चराइजर लगाइए, अगर कोई घाव हो जाता है तो उसका समुचित और सही समय पे इलाज करवाइए, नहीं तो पैर चौड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, घाव विकृत होने लगता है, बदबू आने लगती है, और पट्टी उतारने पे डॉक्टर भी बोलता है कि पट्टी मत उतारिए।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ना, जरा सी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। आज हमने इस एपिसोड में बात की डायबिटिक फूड की। हमारे पास सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछे कि किडनी में भी क्या दिक्कत हो सकती है। अगला एपिसोड हमारा किडनी पर आधारित होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।

0: हमारा नंबर है 8878112343। नंबर पुनः सुने 8878112343। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए मनु सक्सेना और डॉक्टर सचिन चित्तावर का नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे असमिया भाषा के गीत का प्रशिक्षण पाठ। गीतकार हैं सतीश दास। तो आइए सुने ये प्रशिक्षण पाठ।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे।
0: ए माती रे मोरो मोते,
1: मोरो मोते।
0: माती के,
1: माती के।
0: सुमिलो,
1: सुमिलो।
0: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते,
1: ए माती ते।
0: ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी।
0: जी कैसे? ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी, आकी दो बार आकी, आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते हैं वहां ह की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो। दूर आका हार,
1: दूर
0: आका हार। रोहन,
1: रोहन।
0: कियोनु,
1: कियोनु।
0: लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर। ख नहीं बोलना, ह। खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर। मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आ गया है आहा आहा, फिर मातीर बुकुत,
1: मातीर बुकुत।
0: हाँ, मातीर बुकुत। मोनोर, मालोती,
1: मालोती।
0: बूटोलो,
1: बूटोलो।
0: मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, ए माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतर है मोनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे।
0: हुरोर, हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे।
0: पापोरी रे आजी,
1: आजी।
0: इतना हो गया ना?
1: जी हाँ।
0: आगे हुकुमार, थापो नाहुजुवा,
1: नाहुजुवा।
0: हुकुमार

0: पर थापो ना हु जुवा। आगे लिखा है ना
1: जी।
0: हुंदौर खुदीनौर खुदीनौर नहीं खनी ख खुदीनौर
1: खुदीनौर
0: नौतून
1: दृष्टि।
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके। दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना। दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: ना हुआ।
0: आगे ना अच्छा ठीक है। अब गाना सिखाना शुरू करते हैं। स्वर दीजिए जरा।

ऐसे कोनो ना हुआ खून, ऐसे बोलना एक बार, और दूसरे ना हुआ दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना खून दौर से लो, एक दो तीन।

अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना असमिया भाषा के गीत का प्रशिक्षण पाठ। गीतकार थे सतीश दास। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आपकी पसंद कार्यक्रम बस चंद पलों में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना एक बार फिर फिल्म से। आवाजें थी अनुराधा पोडवाल और भूपेंद्र की। संगीत रघुनाथ सेठ का था और शब्द रचना थी विनोद पांडे की। सुनने के लिए आप सभी ने फरमाइश भेजी थी। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर और इनके माता पिता ग्राम खकल तहसील कौन जिला जालौन से, राकेश रोशन वर्मा, अमर रोशन वर्मा, संजू कुशवाहा, प्रकाश अहिरवार, कपूर सिंह घोष, सीमा वर्मा, पूजा वर्मा, राहुल वर्मा, बसारी दरवाजा जिला छतरपुर से। इसी क्रम में ये ईमेल संदेश हमें मिले हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये ईमेल आया है बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू का। एसएम जावेद शगुप्ता और अंजुम ने ये ईमेल भेजा है गुमला झारखंड से। भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से हैं कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, रिश्का और रॉबिन। कार्यक्रम की अगली फरमाइश आप सभी के लिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और साथियों ने। गीत और संगीत है रविन्द्र जैन का। सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता बंधु अशोक कुमार ताम्रकार, श्रीमती सुशीला ताम्रकार, अजय ताम्रकार, श्रीमती शिवानी, अंकित, निशि और नियति ताम्रकार इस गीत की फरमाइश भेजते हैं नीता कॉलोनी मऊरानीपुर से। राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग का ये पत्र आया है भटिंडा रोड डबवाली से। डोगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनिष्का और राधिका गजभिये। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से ये ईमेल मिला है गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डागी का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप अपने ईमेल के साथ। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्राव्या रामटेके ने ये ईमेल भेजा है इसी गीत की फरमाइश के लिए। ये हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और आरजू जाजौरिया नाम के साथ पटेल नगर मलोट पंजाब से। दसमले चौक परतूर जालना से जयश्री दसमले, शिवानी दसमले, अर्चना काटे, आकांक्षा काटे और समस्त परिवार। मस्तानपुरा पूर्णाची से आनंता, अरुणा भगत, लोचना भगत, चेतन कुमार भगत। ग्राम जाखौत से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक का ये ईमेल आया है इसी गीत के लिए। आप सभी के लिए ये गीत

आपकी फरमाइश का अगला नगमा हमने आपके लिए चुना है फिल्म मोहब्बत से, आवाज किशोर कुमार और साथियों की, संगीत निर्देशन बप्पी लहरी का, शब्द रचना इंदीवर की। सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण, ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र चंसोलिया, ननौरा महुआ उत्तर प्रदेश से बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी कुमारी आराधना, सोनिका उपमा और नैतिक वर्मा, ग्राम मामना जिला महुआ से सोहन सिंह राजपूत, ग्राम मवैया पोस्ट इमिलिया जिला छतरपुर से लोकेश कुमार राजपूत, सर्वेश कुमार, बाल कुमार और इनके माता पिता, ग्राम पोस्ट भरवारा तहसील कुलपहाड़ जिला महुआ उत्तर प्रदेश से भगवान दास राजपूत, निहांस सिंह, गजेंद्र, पुष्पेंद्र और आशीष राजपूत, मानसिंह सेहुलिया, मीना सेहुलिया, सत्येंद्र कुमार, वैष्णवी, मोहिनी, सरस्वती, गोदावरी, भावना महक, भूरी, सुनीता, पुष्पा, राहुल कुमार, राजकुमार, हरविलास सेहुलिया का ये पत्र मिला है ग्राम दुर्गापुर पोस्ट बड़ेरा तहसील पिछौर जिला शिवपुरी से। अमित तिवारी, श्रीमती पूजा तिवारी, पंडित राम बिहारी, आशा तिवारी, राजा भैया, अभय कार्तिक, समस्त तिवारी परिवार छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन से, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय का ये ईमेल आया है, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से ये ईमेल भेजा है प्रतीक राय,

श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। ग्राम टोरोवाल जिला नवा शहर से हैं गवनदीप थांदी, तृप्ता थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थादी अपने ईमेल के साथ। हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया ये ईमेल भेजते हैं। मुल्लानपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव और शुभचंद्र आप सभी की फरमाइश पूरी कर रहे हैं इस गीत के जरिए।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म भीगी पलकें के इस गीत के साथ आवाज मोहम्मद रफी की है और सुनना चाहते हैं आप सभी ललितपुर उत्तर प्रदेश से घनश्याम दास रजक कालीचरण रजक रामजी संदेश और संदीप कुमार समस्त परिवार के साथ कैलाश नारायण नामदेव दीपक कुमार द्रौपदी देवी रामदेवी ब्रजेश कुमारी अखिलेश कुमारी लखनलाल चाहना आकाश और रानी परी नामदेव का ये पत्र है ग्राम पोस्ट गोना तहसील महरौनी जिला ललितपुर से वसीम अहमद खान शबनम खान शाहिद अरमान जुनैद अलीशान और आरजू परवीन इस गीत की फरमाइश करते हैं विजयनगर छतरपुर से बिलसराया से रामकेश चक्रवर्ती पुष्पेंद्र सोनम गोल्डी दीप्ति अनुज और ओमजी चक्रवर्ती इसी गीत की फरमाइश भेजी है अपने ईमेल के माध्यम से दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान साइना नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज और चाहत नवाज ने संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या सविता भाकरे शाहजी नगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर राही श्रीमती सरिता गम्हाड़कर प्रिंस एकांश गम्हाड़कर मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये ईमेल भेजते हैं बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत गम्हाड़कर अर्जुन गम्हाड़कर और टुक टुक बहादुरपुरा नागपुर से ये ईमेल आया है वैशाली शैलेश गम्हाड़कर सुमित और कुमारी ध्वनि गम्हाड़कर के नाम के साथ पूरी करते हैं आप सभी की फरमाइश इस गीत के साथ

इसी प्यारे के प्यारे से साथ के साथ और मिलने के वादे के साथ। अनुमति दीजिए अपनी दोस्त उर्मिला यादव को। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है, प्रतीक्षा कीजिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की।

0: इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। मैं छाया पाठक। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से। हमारे फोन नंबर है 2660902। हमें आपके फोन कॉल्स का हमेशा इंतजार रहता है। बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
2: हेलो।
1: हाँ जी, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: जी हाँ, मैं रजनी बोल रही हूँ भिंड जिले से।
1: बताएं वहाँ पर क्या हाल चाल है भिंड के?
2: बढ़िया है।
1: आज कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने, क्या सुनना चाहेंगी?
2: आप एक काम करिए, मुझे ये गीत सुना दीजिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
1: अच्छा, ये वाला गीत सुनना चाहेंगी ताकि थोड़ी सी ठंडक आपके
2: नहाते में जाना की याद भी आ जाती
1: जी। चलिए,
2: मतलब हमेशा का सदाबहार गीत है।
1: सदाबहार गीत है, हाँ सही बात आपने कही। चलिए,
2: गाना तो मिल जाएगा कि फिल्म का नाम बताना पड़ेगा?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। ये सदाबहार गीत आपने पसंद किया है।
3: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना।

0: छोड़ो तौबा है जान छोड़ो।
1: ये गीत है अधूरा करते हैं काम पूरा।
0: अब शोर मत करो जी सुनते हैं सब पड़ोसी।
1: कह दो पड़ोसियों से झांके न

0: बेटियों से।
1: दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

0: हेलो
1: हेलो मैडम, सीपरी जिले के रामखेड़ी गांव से मोतीलाल परिहार बात कर रहा हूँ।
0: मोतीलाल परिहार,
1: जी मैडम।
0: क्या करते हैं वहां पर? खेती किसानी?
1: जी मैडम, खेती करते हैं और आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, रेडियो भी सुन लेते हैं। जी बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं आपके।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: जी बात आपकी, गीत हमारे फोन करे गीत सुने।
0: तो आप
1: और
0: फोन अक्सर लगाते रहते हैं क्या?
1: जी मैडम, 15-20 दिन में लगाते ही रहते हैं।
0: जी
1: और मैडम बढ़िया हो आप?
0: जी सब बढ़िया है। हम
1: सावन भादो फिल्म का सुनवा दीजिए, मेरे नैना सावन भादो।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं छोटू चक्रधारी बोल रहा हूँ, करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से।
0: बिलासपुर में क्या करते हैं आप?
1: यहाँ हमारा सिलाई से जुड़ा काम है, इसी में लगे रहते हैं।
0: काहे से जुड़ा काम है?
1: सिलाई
0: से जुड़ा काम है। आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है?
1: घर में ना अंदर में टावर नहीं आता, इसलिए हो गया।
0: अच्छा, क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: आज
0: हाँ
1: हमको सुना दो। तलाश फिल्म का गाना।
0: कौन सा?
1: नई वाला तलाश, जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी।
0: गाने के बोल तो बताएं।
1: जिंदगी के सफर में ऐसे तक खुद जाना है, पाना है क्या और खोना है क्या। जिंदगी के जुए में पाना है क्या और खोना है क्या, ऐसे तक खा जाना,
0: पाना है क्या खोना है क्या। चलिए ठीक है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी मैम, हम ग्राम जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।
0: संगीता पटेल छतरपुर से?
1: जी।
0: क्या हाल है छतरपुर के?
1: अच्छे है मैम, कभी बादल होते हैं कभी धूप निकलती है। जी,
0: तो आप छतरपुर में ही रहती है या आसपास किसी गांव में?
1: नहीं, छतरपुर के पास में महाराजपुर है, उसके पास में है पुर।
0: महाराजपुर के पास है पुर?
1: जी, ग्रामपुर।
0: ग्रामपुर, तो कुछ बताएं अपने गांव के बारे में, कितना बड़ा गांव है।
1: जी मैम, हमारा गांव वैसे तो गांव ही है, ठीक है, 3000 की आबादी है। जी, और खेती किसानी होती है यहाँ पर।
0: बताएं क्या सुनाएंगी आज?
1: जी मैम, फिल्म का नाम तो याद नहीं मैम, और वो गाना की भूल है कि सॉरी दीदी, अब ना करेंगे हम तो।

0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं राजेश अग्रवाल राजाराम नगर देवास से।
1: देवास से बोल रहे हैं
0: जी।
1: राजेश अग्रवाल जी, पसंद बताएं क्या सुनेंगे
0: जी? ये आराधना पिक्चर का गीत है, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, किशोर दा की आवाज में है।
1: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी जी।
0: नमस्ते।
1: देवीदास कुशवाहा ग्राम पोस्ट बमवाड़ी चला जिला टी गमवाड़ा से।
0: कुशवाहा जी और बताएं अपने बारे में, आपके क्या हाल है?
1: आपसे बात करूँ पहली बार, कार्यक्रम आपका सुनता हूँ मैं कंटिन्यू।
0: कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप लगातार?
1: मध्य प्रदेश का कार्यक्रम मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ, सबसे ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अपने मन पसंद ही अपनी तरह हो।
0: साफ सुनाई देता है आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो चले आज हम क्या सुनवा दें आपको?
1: फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
0: कौन सी?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
0: कौन सा?
1: मुस्कान का जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार। नमस्ते।

अगले गाने लिया है हमने किशोर कुमार की आवाज में। गाने को पसंद करने वाले हैं नाज मंजिल मेहोल सीतामढ़ी बिहार से। लिखने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम अरहान बाबू हमजा बाबू मुजम्मिल बाबू हुमेरा सुमेरा अबीहा शाहीन नाज नूरी नाज बच्चू शेख और चीना शेख। इसी गाने को पसंद किया है कोकिल वारा से ओराई जिला मुजफ्फरनगर से। लिखने वाले हैं मोहम्मद फैसल शेख नुसरत जहां नाज शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शाहनवाज परवेज मसरत जहां नाज और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से। लिखने वाले हैं ओम प्रकाश नेमा किरण नेमा आकाश नेमा विकास नंदिनी शिवाश और समस्त नेमा परिवार। सुनते हैं ये गाना आवाज किशोर कुमार की है फिल्म का नाम है परिचय। गुलजार ने इस गाने को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है।

अगले गाने लिया है हमने फिल्म नमक हलाल से, आवाज आशा भोसले की है, अंजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है औरंगाबाद से, लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर से, लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राव, उषा राव, अमित कुमार राव, हैप्पी राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये खत आया है बनियापारा धर्मतरी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

0: बहनों, अभी आपने साजन फिल्म का ये प्यारा सा गीत सुना। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और अब मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: बहनों, आए दिन हम ये देखते हैं कि कई घरों में बेटी को बोझ सा समझा जाता है, लेकिन ये तो गलत है ना बहनों। जिस तरह लड़के को कुलदीपक समझा जाता है, उसी तरह बेटियां भी तो दो कुलों की लाज निभाती हैं। बेटी को आप बिल्कुल भी बोझ ना समझे। आज के समय में हर बेटी खूब पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे ओहदे पर पहुँच कर काम कर रही है। हर ऑफिसों में वो पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। और बेटियां तो घर और परिवार दोनों को एक समान देखती हैं। वो अपने माँ बाप की इस तरह से सेवा करती हैं कि देखते ही बनता है। लड़के तो एक बार फिर भी अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं, लेकिन बहनों, आज तक हमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी बेटी ने अपने पेरेंट्स को बोझ समझा हो और उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया हो। हमारी बेटियां छोटे से छोटे कार्य से लेकर वायु यान चलाने तक का कार्य बड़ी ही बखूबी से निभा रही हैं। और अब तो अंतरिक्ष में भी हमारी बेटियों ने अपने कदम जमा लिए हैं। तो बहनों, फिर बेटियां बोझ कहाँ रह गई हैं? बेटियां बड़े ही अच्छे ढंग से अपने घर परिवार को चलाती हैं और शुरू से ही घर का एक सिस्टम बनाकर रखती हैं। कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ कितना बचाना है और कहाँ किस जगह पर किसको कितना सम्मान देना है, ये आज के समय में हमारी बेटियों से हमें सीखना चाहिए। पहले के समय में बेटियों को गर्व में ही व्यक्ति छोड़ देते थे, उन्हें जमीन पर कदम रखने ही नहीं देते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है बहनों। आप स्वयं चेतें और समाज को भी एक जागरूकता फैलाने का प्रयास करें कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। जिस तरह आप बेटियों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे, वही बेटी आगे चलकर आपका परिवार अच्छे से संभालेगी और आपका नाम समाज में रोशन करेगी। बहनों, आज के समय में कई घरों में हमने देखा है कि सिर्फ दो बेटियां ही होती हैं और वो बेटियां लड़कों से ज्यादा आगे निकल जाती हैं। उन पेरेंट्स को उन बेटियों पर गर्व होता है कि हमारी ये बेटियां हैं। तो बहनों, फिर बेटी बोझ कहाँ है? आप बेटी को अपनी ताकत समझिए, उससे हर अपना दुख सुख शेयर करें, फिर देखें आप कि बेटी ताकत बनकर हर समय आपके संग खड़ी हुई है और हर निर्णय लेने में वो आज सक्षम है। क्योंकि बेटियां खुद सेल्फ डिपेंडेंट, वो किसी पर आश्रित नहीं है। इसलिए बहनों, बेटियों को बोझ बिल्कुल ना समझें, उन्हें अपने घर की एक जिम्मेवार पर्सन समझें और अपनी बहुत बड़ी ताकत समझें। तो बहनों, ये तो थी छोटी सी चर्चा। अब हम आपसे बात करते हैं स्वच्छता अभियान के बारे में। बहनों, हमारी सरकार समय समय पर कई तरह के स्वच्छता अभियान चलाती है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और समाज में स्वच्छता फैलाने का प्रयास करें। तो आइए कुछ ऐसी ही वार्ता हम सुन रहे हैं स्वच्छता अभियान के विषय में। वार्ताकार हैं दीपाली सेन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज हम चर्चा करते हैं जीवन में स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता कोई कार्य नहीं बल्कि एक ऐसी आदत होनी चाहिए, एक ऐसी आदत जो किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वच्छ जीवन जीने के लिए धारण करनी होगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार की स्वच्छता बहुत जरूरी है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, आपके आसपास की हो, पर्यावरण संबंधी हो, पालतू पशु की हो या फिर आपके कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर की हो। हमें इस बात के प्रति अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए कि हम कैसे स्वच्छता को बनाए रखें। हमारे पूर्वज भी स्वच्छता के लिए संवेदनशील थे, बल्कि यूं कहें कि वे प्रकृति प्रेमी थे। अब चाहे जल स्वच्छता की बात हो या फिर धरा पर्वत पर्यावरण की स्वच्छता की, हम यदि अपने परिवेश को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। स्वच्छ

पिता स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण। गांधी जी को गांव बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपना ज्यादातर समय भी ग्रामीणों के बीच उसी परिवेश में बिताने का प्रयास किया। तभी उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा, जिसमें उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए इसे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। आज पूरे विश्व में जो देश अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, उनके पीछे मूल कारण वहाँ के निवासियों में गंभीर नागरिक बोध होना चाहिए और स्वतंत्रता के प्रति उनकी निरंतर सक्रिय एवं सहभागी होने की भावना है। अधिकांश विकसित देश अपने नागरिकों की इस सजगता, सक्रियता तथा बोध भाव के कारण ही निरंतर स्वच्छ और सुंदर बने हुए हैं। वहाँ उन्होंने बाल्यकाल से ही स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है, जो हमारे देश में केवल स्वयं की स्वच्छता तक सीमित रहता है। स्वच्छ भारत अभियान इस दिशा में एक अकल्पनीय पहल कर रहा है। भारत में स्वच्छता आजादी के बाद से ही एक चुनौती रही है। गाँव हो या शहर, हर तरफ गंदगी और अव्यवस्था, कहीं खुले में शौच की समस्या तो कहीं सड़क पर गंदगी के ढेर है। ऐसा नहीं है कि स्वच्छ भारत को लेकर हाल ही में प्रयास शुरू हुए हैं, जो वरुण विश्व के विकासशील देशों में शामिल होने वाले भारत के स्वच्छता को लेकर पहली पंचवर्षीय योजना 1954 से 1959 से क्रमशः अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है और वह लक्ष्य रातों रात प्राप्त नहीं हो सकता। निश्चित रूप से स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। नागरिकों का भी यह दायित्व है कि वे देश, समाज और अपने शहरों को स्वच्छ बनाने और इस स्वच्छता को निरंतर कायम रखने में अपना योगदान दें। वर्तमान भारत सरकार ने स्वच्छता को लेकर इन दिनों जो भी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है, वह बहुत अहम है। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें प्राप्त न हो। अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक भारत में इस मिशन को निरंतर चलाया जाना चाहिए। भौतिक, मानसिक और सामाजिक और बौद्धिक कल्याण के लिए भारत सरकार ने एक स्वच्छ समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में पहल की है। इस अभियान के द्वारा उन लोगों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जो हर तरफ स्वच्छता लाने की दिशा में अग्रसर हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे पहले लोगों की अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना होगा। पूरे भारत में साफ सफाई की सुविधा को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाना, भारत को स्वच्छ और हरियाली युक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, स्वच्छ स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों और पंचायती राज संस्थानों को निरंतर साफ सफाई के प्रति जागरूक करना, भारत के हर घर में शौचालय का निर्माण करना, खुले में शौच की प्रवृत्ति को भी खत्म करना, हाथ के द्वारा की जाने वाली साफ सफाई की व्यवस्था को जड़ से खत्म करना, नगर निगम के कचरे का पुनः चक्रण और इसे दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाना, इस वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबंधन को लागू करना, खुद के स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना, स्वस्थ कर साफ सफाई की प्रक्रियाओं का पालन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जागरूक करना और सामान्य लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ना, इससे काम करने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर कचरे के निष्पादन का नियंत्रण करना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए प्रक्रिया का पालन करना। ग्रामीण भारत में साफ सफाई की कमी एक बड़ी चुनौती है। स्वच्छता परिवेश के प्रति और खुले स्थान पर मल त्याग बंद, जहां मानव मल अपशिष्ट का सुरक्षित रूप से प्रबंधन और निपटान किया जा सकता है। उन्नत स्वच्छता प्रथाएं अपनाना 2020। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को खास तौर पर बच्चों और देखभाल कार्यकर्ताओं द्वारा हर समय सुरक्षित प्रबंध अपनाना, सुरक्षित प्रथाएं अपनाना, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन 2022। ठोस तरल अपशिष्टों का प्रभावी प्रबंधन इस प्रकार करना कि गांव का परिवेश हर समय स्वस्थ बना रहे। देश में स्वच्छता की बात उठे तो महात्मा गांधी जी की याद स्वतः ही आ जाती है। वे सदैव स्वच्छता के पक्षधर थे। एक बार तो देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि स्वच्छता आजादी से अधिक महत्वपूर्ण है। तो उनकी बात से स्वच्छता के सापेक्ष जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन देश में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार लाने तथा सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक
प्रशासनीय कार्य है। यह अभियान गांधी जी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में अग्रसर एक प्रयास है। गांधी जी हमेशा स्वच्छता के प्रति संवेदनशील रहे हैं। स्कूलों कक्षाओं के दौरान प्रतिदिन साफ सफाई और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षाओं के संबंध में बच्चों के साथ बात करना, कक्षा प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अलमारी

0: आदि की साफ सफाई करना, स्कूल में स्थापित किसी भी मूर्ति या स्कूल की स्थापना करने वाले व्यक्ति के योगदान के बारे में बात करना तथा इन मूर्तियों की साफ सफाई करना, शौचालयों और पानी और पीने के पानी वाले क्षेत्रों की साफ सफाई करना, रसोई और सामान गृह की साफ सफाई करना, खेल के मैदान की सफाई करना, स्कूल बगीचों का रख रखाव और उनकी साफ सफाई अच्छे से करना, स्कूल भवनों का वार्षिक रख रखाव और उनकी रगाई पुताई आदि का ध्यान रखना, निबंध बाद विवाद चित्रकला साफ सफाई और स्वच्छता पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, बाल मित्र मंडली का निगरानी दल बनाना और सफाई अभियान की निगरानी करना, इसके अलावा फिल्म शो, स्वच्छता पर निबंध, पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिताओं, नाटकों आदि के आयोजन द्वारा स्वच्छता एवं अच्छे स्वास्थ्य का संदेश प्रसारित करना। स्वच्छता हमारे लिए अति आवश्यक है। स्वच्छता से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां नहीं होती और स्वच्छ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी स्वच्छता अभियान पर ये वार्ता। वार्ताकार थी दीपाली सेन। और अब मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

बहनों, गीत संगीत की दुनिया बड़ी ही निराली होती है। जब हम कभी थोड़े काम में थक जाते हैं और कुछ ऐसे टेंशन्स हो जाते हैं तो लगता है थोड़ा मूड फ्रेश किया जाए और गीत संगीत सुन लिया जाए। तो आइए सुनते हैं यस बॉस फिल्म का ये प्यारा सा गीत। स्वर है कुमार शानू अलका याग्निक का, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

बहनों, गर्मियों का मौसम चल रहा है, इतनी तेज धूप पड़ रही है कि क्या कहना। ऐसे में हमारे जो बेजुबान जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, इधर उधर बिचारे भटकते फिर रहे हैं। उनकी सुरक्षा का हमें विशेष ध्यान रखना है। अपने अपने घरों के बाहर सीमेंटेड पानी की टंकियां अवश्य रखें, और आपका ये कर्तव्य है कि इन टंकियों को आप सुबह से साफ पानी भरकर रख दें, जिससे कि ये जो बेजुबान पशु हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, वो आकर आपके दरवाजे पर आसानी से पानी पी सकें। इसीलिए हमारे जो पक्षी हैं, उनके लिए भी आप घर के बाहर छतों पर या फिर बगीचे में सकोरे अवश्य टांगें, और एक सकोरे में खाना रख दीजिए और एक सकोरे में उनके लिए पानी, जिससे कि इन बेजुबान पशु पक्षियों को पानी और खाना इस तपती धूप में मिलता रहे। इसीलिए इस तरह बहनों, आप अपने घर में भी इन गर्मियों की लू से बचने के लिए कई तरह के उपाय अवश्य करें। जब भी घर से बाहर निकलें, खूब पानी पिएं, अपने शरीर को पूरा ढककर ही निकलें, काला चश्मा अवश्य लगाएं, हाथ पैरों में और फेस पर सनस्क्रीन अवश्य लगाएं, जिससे कि तपती धूप आपकी स्किन पर कोई भी गलत प्रभाव न डाल सके। सलाद का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें, कच्चे आम का शरबत पीकर जरूर निकलें, इससे कि आपको लू लगने की संभावना नहीं रहेगी। बहनों, सर्दी गर्मी बरसात मौसम तो सब तरह के चलते रहते हैं, लेकिन इन मौसमों में अपने शरीर का हमें विशेष ध्यान रखना है, तभी तो आप मौसम का आनंद अच्छे से ले सकेंगी। और जब आप मौसम का आनंद ले सकेंगी, तो फिर गीत संगीत सुनने का तो मन होता ही है।

अभी आपने जब भी मेट फिल्म का ये प्यारा सा गीत सुना, स्वर था उस्ताद राशिद खान का, फैज अनवर थे गीतकार और संगीत दिया था संदेश शांडिले ने। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है हमें पत्र अवश्य लिखें। अपने जीवन को खुशियों से भरकर जिए, हर दिन को दीपावली की शाम की तरह मनाएं और स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी आशा के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो मित्र दीपाली अग्रवाल को। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रमोद कुमार जोशी के गाए इस दात्रा गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है और जिसमें आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए भजन।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हीरा पन्ना फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का गीत और आरडी वर्मन का संगीत।

और कार्यक्रम का अंतिम नगमा प्रेम पुजारी फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, नीरज का गीत और संगीत एसडी वर्मन का।

0: लता मंगेशकर के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ पर देश के उस अधिक संकल्प को याद किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरी दुनिया ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिखाया कि कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में यह बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों बिना नई खरीद किए जहां संभव हो सके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की उनकी 7 अपीलों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्री

कंपनियों और निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश के 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता के केजीपी 12 के चारों शावकों कल सुबह एक मांग के पास मृत और शतविशत हालत में मिले। महज एक महीने पहले 11 अप्रैल को जन्मे इन शावकों को आखिरी बार 11 मई की शाम जिंदा देखा गया था। शुरुआती जांच में आशंका है कि किसी दूसरे जंगली जानवर ने इन्हें मारा है, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। वन विभाग ने बताया कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। कूनो के बाकी सभी चीतों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी कई लोगों से पूछताछ की। आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स वायदा बाजार में सोना करीब 6% उछलकर करीब 1,62,000 रूपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 6.4% की बढ़त के साथ करीब 2,96,000 रूपये प्रति किलो का कारोबार कर रही है। दरअसल सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसकी वजह से बाजार में यह भारी उछाल आया है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि निमाड़ समेत कई जिलों में शाम का मौसम पलटा और तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश में मौसम का यह मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर उमंग ऐप पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। तो ये था हमारे समाचार इस बुलेटिन के, और अगला बुलेटिन सुनिए शाम को 7:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया

0: डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा

0: शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी

0: 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अधिक संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू चोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। पहली फरमाइश है बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज में गाया हुआ प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत की। गीत इंदिवर का और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत की फरमाइश भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्तफा खान, राउत भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक और मीका बिरक। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

रामपुर का लक्ष्मण, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है। नजरुल सुल्तानपुरी का लिखा और राहुल देवबर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ। इस गीत की फरमाइश भेजी है कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और संदीप पंचोलिया। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह जंदानी, लीला फतेह जंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। आप सबने पसंद किया है प्रेम गीत फिल्म का ये नगमा, आवाज जगजीत सिंह की, गीत इंदिवर का, संगीत जगजीत सिंह का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगली फरमाइश भेजिए बनियापारा धमतरी से, छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, छुटकी शरद डोडवानी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लीवई से गुलाब दास मानिकपुरी, दंतरिंगी से भागवत वर्मा, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश और राजदीप राजेश, साथी राशि राजेश। आप सबने पसंद किया है काश फिल्म का ये गीत, आवाजें किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की, फारूक कैसर के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राजेश शर्मा ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, गीत संगीत रविन्द्र जैन का। इस गीत को पसंद किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसार, रमेश गौण और मोहम्मद शादाब खत्री। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में यह बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30 और रात 8:15। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर आराधना कुमारी से ली गई भेंटवार्ता, विषय है मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक। साथ ही सुनिएगा बुंदेली समाचार और लोक रंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10:00 सुनिएगा वसीम खान का लिखा नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित गिरिराज का सितार पर बजाया राग राकेश श्री। ये थे शाम की

सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। म्यूजियम में 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेब पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेब पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आप

0: आज कार्यक्रम युवा चौपाल,
1: जिसमें आलेख था खुर्शीद अहमद खान का। प्रतिभागियों में कक्का की भूमिका निभा रहे थे अभिदीप सुहाने, काकी की भूमिका में थी शिवांगी तिवारी,
0: धनसु की भूमिका में थे अनुपम खरे, समीर की भूमिका में थे विश्वास तिवारी,
1: रीना की भूमिका में थी सौम्या शर्मा और भरोसे की भूमिका में थे अभिषेक मिश्रा। तो साथियों, अब कहीं जाइएगा नहीं, हम यहां रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका। साथियों, कुछ साल पहले तक अगर किसी को पैसे भेजने होते थे तो या तो बैंक की लंबी लाइन में लगना पड़ता था या फिर कैश लेकर चलना पड़ता था।
2: जी हाँ साथियों, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक हर जगह नगद पैसों का ही बोलबाला था। लेकिन फिर एक ऐसी तकनीक आई जिसने सिर्फ लेन देन का तरीका ही नहीं बदला बल्कि पूरे देश की आर्थिक आदतों को बदल करके रख दिया।
1: साथियों, पिछले 10 वर्षों में यह बदलाव इतना तेज रहा कि डिजिटल पेमेंट अब सुविधा नहीं बल्कि लोगों की आदत बन चुका है और इस बदलाव का श्रेय जाता है UPI को।
2: साथियों, UPI की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने विकसित किया था। शुरुआत में लोगों को ऑनलाइन भुगतान पर भरोसा कम था। कई लोगों को लगता था कि ये प्रक्रिया मुश्किल होगी या पैसा कहीं फंस जाएगा।
1: लेकिन UPI ने पैसे भेजने और प्राप्त करने का तरीका इतना आसान बना दिया कि कुछ ही सेकंड में मोबाइल नंबर या QR कोड के जरिए लेन देन होने लगा। धीरे धीरे यह तकनीक हर वर्ग तक पहुंच गई।
2: बिल्कुल सही। और साथियों, यही वजह है कि आज ये स्थिति है कि सब्जी वाले से लेकर के बड़े शोरूम तक हर जगह QR कोड दिखाई देता है। लोग नगद पैसा रखने से ज्यादा अपने मोबाइल फोन में पैसा रखना पसंद करते हैं।
1: साथियों, UPI ने आम लोगों को बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जोड़ने का काम किया है। गांव में रहने वाले लोग भी अब डिजिटल लेन देन कर रहे हैं।
2: जी हाँ साथियों, इन 10 वर्षों में UPI ने खुद को लगातार बेहतर बनाया है। इसी दिशा में UPI लाइट जैसी सुविधा शुरू की गई जिसका उद्देश्य छोटे भुगतान को और भी तेजी और आसानी से करना है।
1: साथियों, UPI लाइट में उपयोगकर्ता अपने वॉलेट में एक सीमित राशि जोड़ सकते हैं और छोटे छोटे भुगतान बिना बार बार बैंक सर्वर पर निर्भर हुए तुरंत कर सकते हैं। इससे नेटवर्क व्यस्त होने पर भी छोटे ट्रांजैक्शन आसानी से पूरे हो जाते हैं।
2: और इसमें खास बात यह है कि छोटे भुगतान के लिए कई बार पिन डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है जिससे प्रक्रिया और तेज हो जाती है।
1: साथियों, UPI की सफलता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। आज कई देश भारत के इस डिजिटल पेमेंट मॉडल में रुचि दिखा रहे हैं।
2: साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि जिस देश में कभी नगद लेन देन सबसे अधिक होता था वही देश आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड बना रहा है।
1: साथियों, डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। लोगों को समझना होगा कि सुरक्षित लेन देन के लिए सतर्क रहना बेहद आवश्यक है।
2: अगर हम पिछले 10 वर्षों को देखें तो ये सिर्फ एक तकनीक की सफलता नहीं बल्कि नए भारत की सोच और डिजिटल आत्मनिर्भरता की कहानी है।
1: साथियों, UPI ने साबित कर दिया है कि अगर तकनीक आसान, सस्ती और भरोसेमंद हो तो वह देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है।
2: तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जिसका विषय था UPI पेमेंट्स। और कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं
4: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: साथियों, अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। और साथियों, एक बार फिर से आपके मनोरंजन के लिए हम आपको ले चलते हैं गीत संगीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये गीत ज्वेल थी फिल्म से, जिसमें आवाज थी किशोर कुमार की,
1: गीतकार थे मंजू सुल्तानपुरी और संगीत से सजाया था एसडी वर्मन ने।
0: तो साथियों, अब हम दे देते हैं आपको हमारी आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। साथियों, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है।
1: पद का नाम कांस्टेबल, ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल और पाइनियर विंग।
0: पदों की संख्या है 9195।
1: शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार भिन्न भिन्न है।
0: आयु सीमा ड्राइवर के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है। अन्य पदों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
1: आवेदन की अंतिम

0: तिथि है 19 मई 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.rect.crpf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: पीयूष, क्यों ना अपने दोस्तों का एक बार फिर से मनोरंजन करवा दिया जाए।
1: बिल्कुल आस्था।
0: तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म से गीत, जिसमें आवाज थी किशोर कुमार की।
1: गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सजाया था एसडी बर्मन ने।
0: साथियों, तो अब हम आपको बता देते हैं हमारी कल के कार्यक्रम के बारे में। साथियों, कल आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम एलिफेंट्स। साथ ही होंगी महत्वपूर्ण चर्चाएं और आपके मनोरंजन के लिए होंगे मधुर गीत।
1: तो इसी के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए आपकी दोस्त आस्था द्विवेदी
0: और पीयूष चतुर्वेदी को
1: नमस्कार।

अभी युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद 6 बजे भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में सुनिए किशन प्रसाद रैकवार से बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे ग्राम सभा, इसमें सुनिएगा धारावाहिक अटकन चटकन। विजेंद्र कुमार सिंह से सुनिए वार्ता बुंदेलखंड क्षेत्र में।

0: आधुनिक फल उत्पादन तकनीकी। आज की सीख का विषय होगा छाती ठोकना। रात्रि 8 बजे भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में। 8:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे होगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। कल सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत सुनिए महेश बिलथरे से बुंदेली किस्सा नेकी का फल। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 8:30 पर भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में सुनिएगा ब्रजभान विश्वकर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिएगा एक ही गायक के अंतर्गत मोनाली ठाकुर के गाए कुछ फिल्मी गीत। 10:05 पर विविध कार्यक्रम सबरंग में सुनिए राजस्थानी लोकगीत। 10:30 पर होगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12 बजे आपकी फरमाइश और 12:30 पर संग्रहालय से। 1 बजे सुनिएगा महिलाओं का कार्यक्रम महिला सभा। इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर आरपी गुप्ता से वार्ता फूड पॉइजनिंग से बचें। 1:30 पर आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। इसके अलावा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही अनुप्रसारित करेंगे 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुने श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। 5:40 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कल सुनिएगा राजू पटेल व साथियों को। 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा में सुने जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कंपेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुणों बतकाओ, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। डॉक्टर अभिषेक शर्मा से वार्ता सुनिएगा किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान। और आज की सीख का विषय होगा छाती पे पथरा धरके। 8 बजे भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में। 8:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे होगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। तो श्रोताओं ये तो थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:58 हो रहे हैं भोपाल से न्यूज हेडलाइंस और उसके उपरांत भोपाल से ही प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी हम अनुप्रसारित करेंगे। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा के साथ पुनः स्टूडियो में हाजिर होते हैं।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना मंजूर की है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के उच्च मूल्य को देखते हुए किया गया है।

एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवनी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ से अधिक लाली बहनों के खाते में 1,835 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। प्रदेश में शासकीय कार्यप्रणाली में नवाचार, सुशासन और जनसेवा के उत्कृष्ट प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संपर्क अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 मई को वित्त ग्वालियर अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विंगेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
1: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान।

0: पान की।
1: तो विमलेश जी आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी जी जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
1: जी
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है, इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा, दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चार निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो
4: चलो चलो होगा। चलते
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था, दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी,
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें।
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी बच्चे, पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, बहुत ठंडा पानी था। लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ, मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत

0: गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
0: नहीं समझे?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा चलते हैं
1: और सारे दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
2: अब गर्मी अम्मा है।
3: अब बिल्कुल ठीक समझी, मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा आप कब आती है पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है हाँ, तो गर्मी भी तो लगनी
3: शुरू हो जाती है। हाँ।
1: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है।
1: हाँ चलो चलते हैं। चलो
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या करा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहाँ दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही है? अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है। दूंगी तुम्हें दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है, पसंद है, सबसे अच्छा भी है। कौन सा फल है? कौन सा फल
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो।
1: हाँ बच्चों,
0: मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना।

0: भी खाते हो ना? अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ।
0: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
0: लो।
1: गर्दी अम्मा, आप बहुत अच्छी है।
0: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: Bopha's gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।

0: ابو بيراي
1: लेकिन हाँ
0: इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
1: हाँ हाँ, पहनने से तो कोई कबायली लगता है।
0: हाँ
1: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
0: हाँ
1: कोई जासूस तो नहीं? वर्णन दिल से।
0: हाँ आने तो
2: आने तो रुका रुका, जाओ वहीं रुक जाओ, रुका।
3: कौन हो तुम?
4: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
4: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा यही रुको, चलो कमांडिंग साहब ने बुलाया तुम्हें।
4: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
4: सर हम एक चरवाहा हैं।
0: आगे बताओ।
4: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।

0: अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
1: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
6: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज हमारे कलाकार हैं किशन प्रसाद रकवार। आरंभ में इनसे सुनते हैं ये लोक शैलीबद्ध गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
2: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
1: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
2: जोयल के असली पत्थर के लिए आएं ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
3: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बीआर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
5: कार्यक्रम में आगे सुनिए किशन प्रसाद रेकवार से ये संविधान गीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए कार्यक्रम में आगे सुनिए ये लोक शैलीबद्ध गीत किशन प्रसाद रैकवार से।

0: लगाओ इंजेक्शन।
1: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: लीजिए अब सुनिए ढिमरियाई किशन प्रसाद रैकवार से।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि

इसी के साथ बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा समाप्त होता है। इसमें आज हमारे कलाकार थे किशन प्रसाद रैकवार। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गुमशुदा की तलाश की सूचना। पहली सूचना है कुमारी साक्षी के बारे में। इनके पिता महेंद्र पाल मुहालनाया पटेल नगर ब्लॉक के पास कोच लिखते हैं कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री साक्षी उम्र लगभग 19 वर्ष दिनांक 14 फरवरी 2026 को ब्लॉक के पास नया पटेल नगर कोच से सुबह 7 बजे घर से निकली थी। आज तक वापस न आने पर दिनांक 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार को थाना कोच में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। गुमशुदा का नाम है कुमारी साक्षी। इनका हुलिया है रंग गोरा, आंखें कंजी, बदन मजबूत, कद 4 फुट 4 इंच, उम्र लगभग 19 वर्ष। इनका पहनावा है कि ये गुलाबी रंग का स्वेटर और नीले कलर का लोअर पहने हैं, नाक में सोने का फूल पहने हुए हैं। यदि किसी को गुमशुदा के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो इन नंबरों पर और संपर्क सूत्र पर अवगत कराने का कष्ट करें। सही सूचना देने वाले को नकद धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा। संपर्क के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महेंद्र पाल मोहल्ला नया पटेल नगर ब्लॉक के पास कोच। इनका मोबाइल नंबर है 9519490665। दूसरा मोबाइल नंबर है 7754858205। कोतवाली कोच का मोबाइल नंबर है 7983486530। तो ये गुमशुदगी की जो सूचना थी वो कुमारी साक्षी के बारे में थी, जो कोच से लगभग 7 बजे निकली हैं। इनका रंग गोरा है, आंखें कंजी, बदन मजबूत, कद 4 फुट 4 इंच के लगभग है और उम्र लगभग 19 वर्ष की है। दूसरी सूचना जो है वो है वर्षा के बारे में। इनकी उम्र 19 वर्ष है। इनका हुलिया इस प्रकार से रंग गोरा, दोहरा जिस्म, ऊंचाई 5 फुट, लाल कलर का फ्रॉक पहने हुए हैं। इनके पिता का नाम है नूर शाह। पता है ग्राम भिटारी, थाना सिरसा कलार, जनपद जालौन। ये दिनांक 25 फरवरी 2026 को दोपहर 2:30 पर ग्राम भिटारी से कहीं चली गई हैं। किसी को मिले तो इनके परिवार का जो संपर्क का मोबाइल नंबर है वो नोट कर लें। वो नंबर है 9580056709। क्षेत्राधिकारी जालौन का मोबाइल नंबर है 9454401428। जांच अधिकारी SI अनूप सिंह का मोबाइल नंबर है 9305490479। थानाध्यक्ष सिरसा कलार का मोबाइल नंबर है 9454403605। इसके अलावा एक और मोबाइल नंबर है 8470851123। इसके अलावा आप निकटस्थ थाने में भी इसकी सूचना दे सकते हैं अगर ये दोनों

साक्षी और वर्षा कहीं आपको लगती हैं कि ये मिली हैं तो आप को मोबाइल नंबर याद नहीं रहते हैं तो आप निकटस्थ थाने में भी इसकी सूचना दे सकते हैं। गुमशुदा सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 7:10 हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख, आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का बड़ा कदम, काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की, मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त, 125 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा, 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का एक लेख साझा किया है। इस लेख में पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशनों और बेहतर रेलवे नेटवर्क से हो रहे विकास का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव पंजाब के लोगों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल रहा है और क्षेत्र में अनेक नए अवसर लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों में अपने काफिले का साइज काफी कम कर दिया है और अधिकारियों को बिना नई खरीद के इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने की उनकी अपील पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। डॉ यादव ने सभी मंत्रियों अधिकारियों को भी कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
1: प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए, पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए, इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है, मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई के बीच यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 43 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर अहम बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस सीजन में किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीज को लेकर हुई है। सरकार इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल खरीदेगी।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सीबीएसई ने आज 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। देशभर में 85.20% विद्यार्थी पास हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 3.19% कम है। प्रदेश

0: के भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 5.77% कम रहा और यहां केवल 79.43% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सके। तिरुवनंतपुरम में रीजन 95.62% के साथ देश में सबसे आगे रहा। विद्यार्थी सीबीएसई की वेबसाइट डिजीलॉकर या उमंग ऐप के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी की। डॉ यादव ने प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक कुल 55,926 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
2: 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया। आज 34,00,000 महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर पशुपालन करते हुए जो भी पशु पाल सकते हैं आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो, सरकार आपके साथ खड़ी है।
0: महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बब्बेवाड़ी इलाके में गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया था। सरकार ने CBI को अनियमितताओं की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय छात्रों को मार्कशीट और डिग्री डिजीलॉकर में अपलोड करें, साथ ही हर छात्र को स्वयं पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाए। इससे देश के बेहतरीन शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि 31 मई तक छात्रावासों में किचन नहीं बने तो सीधी कार्रवाई होगी। 15 मई से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू होगी, जिसमें 4,000 ओबीसी युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। दिल्ली में पढ़ रहे ओबीसी छात्रों को 10,000 रूपये महीना सहायता योजना का भी व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए। सरकारी काम में नवाचार और बेहतर जनसेवा के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 के आवेदन मांगे हैं। ये पुरस्कार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे और हर पुरस्कार में 1,00,000 रूपये की राशि मिलेगी। 15 जुलाई 2026 तक awards.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 14 मई को ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में संपर्क अभियान 2026 के तहत विशेष शिविर लगाएगी। IPL में अब से कुछ देर बाद रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अशोकनगर में जिला आपदा प्रबंधन द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न आपदाओं के संबंध में बताया गया। शाजापुर जिले में नेशनल हाईवे 52 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात थाना प्रभारी और NHI अधिकारियों ने पनवाड़ी ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। अपराधों की जांच को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में जनगणना कार्य को सुचारू और असरदार बनाने तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज कलेक्टर ने जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहडोल जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत तालाब बोरी बंधान रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत 0 से 1 वर्ष के 567 बच्चों का टीकाकरण हुआ। आगरमालवा पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 552G सहित जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में 18 उपार्जन केन्द्रों पर अब तक 4,537 किसानों से 23

0: 7727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। नीमच में कलेक्टर कार्यालय परिसर में कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। देवास जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी और 23 जून को वापस लौटेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रविन्द्र सिंह बिट्टू का लेख। आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम। काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की। मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त। 125 करोड़ बहनों के खातों में पहुंचे 1,835 करोड़ रूपये और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का MSP बढ़ा। 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना। जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनबे बारे सबई भैया बहन खां की सुभैया की राम राम। पंचो कई जात के खुद को काम खुदई को कहाऊ, ई में भैया कोनों के दब्बू नहीं रात और भैया ना कोनों को दबारो। अगर हमारे पंच खुद को रोजगार कर रहे हैं तो ई से अर्थव्यवस्था सो मजबूत बनत और भैया देखो संगे संगे व्यक्तिगत विकास सो होत और व्यक्ति खुदई को मालिक बन के रात। ई के लाने भैया सरकार ने केऊ स्वरोजगार योजनाएं लागू करी। ई के अंतर्गत 50,000 से 10,00,000 तक को ऋण सरकार द्वारा मिला थे। अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत देखो भैया खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा संचालित करू जात और इसे भैया ग्रामीण और शहरी क्षेत्रन में उद्योग स्थापित करने में सहायता मिला। इसे भैया तीन प्रकार के लाभ होते। पहलो तो देखो स्वतंत्रता, अपनो काम हो सुबहिया स्वतंत्रता रात, अपना करने तो ठीक है नहीं करने तो ठीक है, और भैया घंटा भी अपन अपने हिसाब से 6 घंटा 8 घंटा निर्धारित कर सकते हैं और भैया खुदई को फैसला लेवे की आजादी रात। ई स्वरोजगार में सबसे ज्यादा जो लाभ है। दूसरो भैया आर्थिक विकास के अंतर्गत उम्दा कमाई की संभावना रात। स्वरोजगार में भैया अपना लाभ भी होत, के उर भैया अपना हानि भी उठाने आउत, लेकिन भैया हर समय हानि नहीं बल्कि हर समय अपना लाभ ही मिला थे। और तीसरो भैया रोजगार सृजन, यानी भैया अपन दूसरन खां भी नौकरी दे सकते हैं और भैया अपने रोजगार के द्वारा अपने स्वरोजगार के द्वारा भैया केऊ परिवार के पेट पाल सकते हैं भैया। और देखो भैया जब स्वरोजगार की बात अपन कर ही रहे हैं तो देखो आजकल अपन देखते हैं कि गांव देहात से भैया लोग बाग है शहर को पलायन कर रहे हैं। रोजगार ना होवे के कारण भैया हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग सभी शहरी क्षेत्र को भैया पलायन कर जात। अच्छा इसे भैया हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगन के बाल गोपाल हैं

उनमें सबसे ज्यादा समस्या आउत है कि भैया भी उम्दा तरीका से ना तो पढ़ लिख पाउत है और ना भैया उनको विकास हो पाऊ। और संगे संगे भैया एक और होते है कि बाहर की रोग राई केऊ पंचन के हो जाते सो भैया भी गांव लौट आऊ तो भैया एक से दूसरो, दूसरे से तीसरो, ऐसे भैया पूरे गांव में रोग बाधा सो फैल जाते। तो भैया जित्तो होवे अपने खुद को रोजगार करके अपने बाल गोपालन की सेवा समार करें और भैया अपने खुद के काम से उम्दा कछु नहीं। और भैया कहो जात के बाहर की चार रोटी और घर की दो रोटी सुख देती और भैया इसे खुद ही के रोजगार करके अपने पंच बाहर शहरी क्षेत्र में जावी से बचें और भैया अपने बाल गोपालन को और अपने भैया बाप माताई की सेवा समार करें। तो इसे भैया सबसे उम्दा काम है। और भैया अगारे अपन पंचन से बतकाओ करें ऊके पहले अपन लेते हैं तनक सो विराम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: हाँ देखो भैया, विराम के बाद फिर अपने पंचन को कार्यक्रम में स्वागत है। और पंचो देखो, अपन आजकल खेती किसानी तो हमारे सभी पंच जुड़ी हैं, तो रासायनिक दवाई डार डार के भैया माटी की जो पोषक क्षमता है वह भैया बढ़ा जा रही, माटी की उर्वरता जो क्षमता है वह दिन दिन भैया घट जा रही। और ऐसे में अगर अपन ने ध्यान न दो तो एक अपनी जो माटी जो है खेतन की माटी बंजर हो जाए। और भैया इसे अपन को जैविक खाद को उपयोग करने, इसे भैया माटी की उर्वरता संरचना और जल धारण क्षमता बढ़ जात। अच्छा भैया, जैविक खाद सूक्ष्म जीवन को पोषक दे और भैया माटी को बंजर होवे से बचाऊ थे। इसे भैया माटी जो है भुरभुरी और सरंददार हो जात। अच्छा इसके संगे संगे भैया हवा को संचार जो है उम्दा तरीका से हो। अब भैया पानी को सोखने की क्षमता और भैया ज्यादा देर लो नमी बनाए रहने में सक्षम रात जैविक खाद के द्वारा। अच्छा भैया जैविक खाद से माटी में केंचुआ और अलग अलग लाभदायक सूक्ष्म जीवन के लाने भोजन और भैया रेवी को उम्दा स्थान बनत। और भैया जिस सब मिल के का करत है माटी की उर्वरकता बढ़ा उतरात है। तो जैविक खाद में भैया खर्चा कम हो जात, कैसे भैया रासायनिक खादन में खर्चा बिलात लगत, तो भैया अपनो पैसा टका भी बचत है और भैया देखो उम्दा फसल की पैदावार होत है। और देखो भैया अगारे फिर पंचन से मिलत हैं तनक से विराम के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: भैया विराम के बाद फिर अपन को स्वागत है। और देखो भैया, आज है बुधवार और आज अपन सुनाते हैं धारावाहिक अटकन चटकन को भाग 3 को पुनः प्रसारण। तो पंचो सुनो।

0: काया अटकन भैया? अरे आज अनमने से काया बैठे अनमने से, का कछु तबीयत अबियत गड़बड़ है का? अरे अबे लो, कप कपी लगी, तुम तो कप रहे का हो?
1: अरे आ चटकन, तबीयत तो ठीक ठाक है, कपीसियां रहे के काकी को ना को डर जी में अबेलो निकलू हमा ना भगते चटकन तो बेघल ने ते डणों को आखा के बुखारे चढ़िया तो फुआ खाई।
0: बिल्कुल भच्चा, वही मैं कह रहा हूँ कि काया न मने से काया हो, कछु और बात लग रही है आज मुझे।
1: अब और बात तो कछु नहीं है चटकन भैया, जे या के जब जेब में कछु ना राय सो उसे तापसी चढ़ी ही जात है, कछु काम में मन नहीं लगत।
0: जा तो साची है अटकन भैया, अकेले कछु काम खा पैसा टका अटक गए का जो ना इतने
1: अरे
0: मने हो।
1: हाँ अटके नहीं है, आज रात के का भाव के खैर छोड़ो,
0: अरे
1: तुम सुनाओ का हाल चाल है चटकन भैया।
0: अरे अटकन भैया, पहला अपनी रात बारी बात तो बताओ, कछु ना कछु तो जरूर भाओ भैया, नहीं तर अपन ऐसे अनमने ना राते जो है सो।
1: अब का बताइए चटकन भैया, रात के जो भाव कि हमें आओ सपनों
0: अच्छा
1: कि हमारी पछीत बारी बकरी के गड्ढा में ये खूब बड़ा भड़ा डरू
0: अच्छा
1: सो
0: सो
1: हम गए सो भड़ा में लगाओ।
0: कहा तो भैया वो हाड़ा में।
1: अरे ऊ भड़ा में चटकन ना पूछो बाबा, ऊ में पूरी 2 सैकड़ा हाथी सोने की मोहे 2 सैकड़ा। आओ
0: काय अटकन भैया, 2 ही सैकड़ा मिली हती? अरे भाग से जब मिली ही हती 4 ही 6 सैकड़ा मिल जाती, कछु धंधो पानी ना कर लेते अपन और। हो खैर वो तो ठीक है, बताओ फिर का भाओ।
1: अरे फिर का भाओ चटकन के हम भी लेके गए बाजारे सो जल्दी बिक गई भी
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: पूरे कर करे मिले 5 लाख रुपया कर करे। हाओ
0: फिर भैया का भाओ 5 लाख को?
1: अब ना पूछो तो साजो है चटकन भैया,
0: काय काय बताओ तो।
1: फिर बस आंख खुल गई।
0: अरे अटकन भैया, अपन इतने समझदार हो कि गांव भरे खा तो शिक्षा दे, वो खुद गलती कर बैठे।
1: काय हमने काय गलती करी, अब हम का करते होते बताओ।
0: अरे काय का करते, आंख खुलवे के पहला भी 5 लाख बैंक में ना जमा
1: जो तो
0: कर
1: ठीक है चटकन भैया,
0: देते।
1: काय चटकन तुम फुआ कूद नहीं गए सब यार का देख भी उन कैसी है उनकी तबीयत।
0: हाँ अटकन भैया, हम तो अवेलो नहीं जा पाए, अकेले ये काम करो,
1: का
0: चलो अब ही चलिए गेल में हो, चले बतकाओ अपने तो।
1: हाँ हाँ चलो चलिए, लेकिन का बताइए चटकन, हम तो गए थे एक दिन उन लो
0: अच्छा अच्छा
1: का भाव के पहले गए हम मलेरिया बाबू लो,
0: हाउ हाउ हाउ
1: सो उनने दई कछु गोली के जे फुआ खा खान है।
0: अच्छा अच्छा सो खवाए थे उन्हें भी गोली के? नहीं
1: अरे काय खा खवाई, जब भी गोली लेके उन लोग गए सोने माँ फेंकी बोली मोई नहीं खाने जे गोली ओली अटकन।
0: अरे
1: हाँ माँ ले जा अपनी गोली ओली जे
0: गुस्सा
1: नहीं,
0: हो गई।
1: यही गोलियन में पगलिया नहीं जात, यही गोलियन में
0: अच्छा
1: और यही गोलियन में गर्मी के मारे में भूख नहीं लगी सब यार, एक माँ माँ दूर फेंके ये भूरे पे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा फिर का भाओ अटकन मज्जा?
1: अब फिर चटकन हमने एक सोची जुगत के फुआ खा सीधे मन से तो गोली खाने ना कहाई, उन्हें कछु मिठाई इठाई में धर के खवा दे और उन्हें बताए ना
0: अच्छा अच्छा
1: सुखा लेने उन्हें।
0: हाँ फिर खवा नहीं अपन ने?
1: आओ फिर गए हम सो बाजारे रसगुल्ला लाओ हमने और रसगुल्ला के बीच में हरा के अच्छी तरह से धर दई भाई गोली और फुआ लो गए के फुआ तुम्हारा बुखार के मारे हैं मो खराब,
0: अच्छा अच्छा
1: सो जो रसगुल्ला खा लो सो मो ठीक हो जाए तुम्हारो और भूख सो खुल जाए रसगुल्ला से।
0: हाँ फिर तो फुगा ने रसगुल्ला के माने तुरंत ही खा ली
1: अरे का बताइए चटकन,
0: होंगे।
1: यही बात की तो हैरानियां है।
0: अच्छा
1: दूसरे दिन आज जब फिर कहीं हम उनसे पूछ भी गए
0: हाँ
1: कि फुआ रसगुल्ला खा लो तो क्या नहीं खा लो तो,
0: हाँ।
1: सुबह बड़े प्रेम से बोली के खा लो तो रसगुल्ला तो अकेले उनके भीतर जो ने गुठली कड़ी थी वह घूरी में फेंक रही थी।
0: ले ओ अटकन भैया,
1: हाँ
0: जो आ गओ फुगा को घर
1: हो आई गो फुगा
0: है?
1: दूर में दिखा दी आप तो बैठी दालान में।
0: आज तो फुगा पराठे से खा रही। अरे फुगा का हो रहा फुगा?
2: अरे बेटा हरो आओ आओ, अजी मुँह इतनो करो धरो जो बुखार से, आज मन भरो तो।

0: रे पराठी बनाइए, सुबह आ बनाए थे।
1: साजोराव चक्कन
0: हाँ,
1: आगा
0: दो
1: जल्दी
0: तीन
1: मौका
0: ठैया
1: आपने।
0: डरे हैं बेटा, आओ तुम्हारे और खा लो, बैठो बैठो।
1: अरे पराठी तो खबाई जे हैं फूआ, भी कहाँ भगे जा।
0: हाँ हाँ बेटा।
1: अकेले आपन बताओ कि बुखार उतरू के नहीं उतरू हुआ बे तुम्हारा।
0: अरे अब का बताइए बेटा, कहाँ उतरो, अतरे आके चढ़ैया उत। मुझे तो ऐसा लगा कि जब सबरे गांवन में को ना खू को बुखार चढ़ोया रहा थे,
1: हो
0: सो कछु नाटक सो लगा, तो मुझे तो कछु के नाटक है।
1: अरे कैसो नाटक फूका।
0: अरे जो आई के कोने कछु कर दो है, कछु ना कछु जादू टोना जरूर कोने कर दो बेटा, मुझे तो ऐसा ही लगा थे।
1: बिल्कुल कर दो फुआ, जादू तो टोना तो जरूर करो है। अकेले जो जादू टोना को आदमी को करो नो ना भूतन को, जो ही बड़े बड़े मच्छरन को करो है जादू टोना। हो
0: मछरा तो संसारी भर में है, ऐसो और गांव में तो कौन नहीं सुनो, जो तो जरूर जादू टोना आए बेटा, जादू टोना। और एक बात और सुनो,
1: कैसी।
0: मुए रात रात भर भूत दिखात भूत। अरे हाओ तुम्हें हंसी आ रही।
1: अरे फुगा अभी जमाने में भूत नहीं, बुखार में ऐसो लगन लगत के जैसे भूत दिखा रहे हो।
0: अरे जाओ चलो लगन दो, आज लगने हैं उते जो कूड़े बाबा है ना,
1: हाँ
0: कूड़े बाबा लो जात्रा लगने,
1: ले।
0: सो मोए तो उतई जाने और उन्हीं से अपनी विनती करने
1: अरे
0: है।
1: फुआ होते तो बहुत भीड़ पड़त, और कुल्ले दूर है लारी फटफटिया ट्रैक्टर ठेला बहुत करती, चीरेंगे नहीं मिलत चीरेंगे।
0: अरे रहन दो मुलक दूर, मैं तो चाहे जैसे जाऊं मैं तो जरूर जे हूँ, चाहे मुझे निंके कहे ना जाने पड़े, दोपहर लौट लो पहुंच ही जे हूँ मैं तो।
1: अरे फुगा तुम सोई, एक तो फुगा तुम्हें कम दिखात, दूसरा देखो बुखार चढ़ो सो हिम्मत तो है नहीं है। तुम ना परो ये ढकोसला में दरबार अरबार की दवाई आ गई सो हुआ, खाओ जो है सो बस ठीक हो जाओ।
0: अरे रहन दे मोई। अरे मोई खाने जा तो दवाई अवाई धरे जा अपनी दवाई। अरे मोई तो ते कूड़े बाबा लो जाने, मैं तो नहीं से अपनी बिनती करूं।
1: ऊ सही तो रोज सड़क पे दुर्घटनाएं घटती, ओते ना
0: अरे
1: जाइयो फुआ राम नहीं।
0: ऐसे कैसे होत रहती, अरे नाए माए होने गो सोआ हो जाती दुर्घटनाएं। अरे मोए तो सड़क के बीचों बीच आने ने, फिर कैसे हुई है सड़क दुर्घटनाएं, चलो रान दो। मैं तो
1: बस
0: जरूर जे
1: बस बस
0: हूँ।
1: हुआ, जैसे ही तुम्हें सड़क के बीचों बीच निगने सो कोनो लारी ठेला तुम्हारे ऊपर हो सर से कर जाने और तुम्हें भूल जाने टें।
0: देख तो नास के मिटे होट बोल गई, चलो मिटे मोरे ऊपर हूँ अबेलो, हजारन हवाई जहाज यहाँ कड़ गई हजारन, मोए तो कछु नहीं भो अबेलो, फिर जे हल्की पतरी ठेला कारे मोरो का बिगाड़ ले।
1: खाए चटकन
0: हाट कर
1: सुनो तो
0: भैया।
1: ठीक है आपो नहीं चलिए,
0: अच्छा
1: एक तो गांव भरो तो जुड़ नहीं कहाओ,
0: हो हो
1: सोई गांव की साफ सफाई के बारे में दरबार हो जे है। और
0: हाँ, और उतई कलेक्टर साहब के आवे की बात अपन सब खां बता दे भी
1: आओ
0: हैं, सो सब जनन खां पतो पर जे है। चटकन भैया अकेले चल भी काय से जो तो बताओ।
1: देखो चटकन भैया
0: हाँ
1: अपन
0: भैया।
1: खन के तो जाने नहीं है, लारी जात सो दो ना से लगने, दो रुपया माँ से लगने तो चार देवी रुपया, और लारी पे चल भी देखो भाई।
0: हाउ हाउ, और जे फुगा के पराठे बांध लो सो उतना ही ओढ़े हैं जो है
1: हाओ, तो बंद नहीं है। चलो फुगा, अरे तुम सोई नंग के जाने, तुम्हें नंग के जाने, अरे लारी से चलो हमारे संग, दे दियो 4 रुपया का हुई। और
0: हाउ बेटा हर हाउ।
2: चलो भैया चलो चलो ऊपर खा तो चलो, खिलखिलो खाए हाँ चढ़ आए, चढ़ो भैया
1: ऊपर
2: खा तो
1: चढ़। ओ भाई ये सादा ठेला रखा है तुमने, पूरी सीट पे बैठा ले और किराओ देते ना हुई हो। अरे एक आध खोली में बैठा लो, तनक हमारी फूगा तो बैठे जा रहे हैं बूढ़ी है जो, हम तो ऐसे है कि हम चटकन ठाड़े ठाड़े चले जाए।
2: हाँ हाँ सही है कही।
0: हाँ चलो जो साजो रहो, कम से कम मुझे तो बैठे देखो जगह मिल गई। अरे वो आऊ बारे भैया, ए सुनत नहीं है मैं तुम्हें यहाँ से कह रही। अरे भैया जब बीड़ी तो फेंक दो, मुझे तो उकाई भर रही है। अरे भैया जब बीड़ी फेंक दो।
2: अरे हाँ हाँ भैया बीड़ी फेंक दो।

0: हैं, देख नहीं रहे बस में सामू काल को, धूम्रपान वर्जित है, बीड़ी सिगरेट पीना मना है, वही खा पढ़ लो जब बीड़ी तो फेंक दो।
1: चटकन तम तो देखूगा भाई
0: काहे काहे
1: सांदे बैठे रहो
0: काहे।
1: अरे जो ई खिड़की लो देखो तना का लिखू, ईमेल लिखो बच्चे दो ही अच्छे
0: आओ,
1: और जे बगल में बैठी भाई आठ डोरे आए आठ या
0: ओ फुगा चलो लो उतरो हैं, जो आगो कुंडे बाबा को दरबार।

0: बड़ी
1: अरे कहे कुल बाप महाराज जा बड़ी पूजा कहा था अरे तनक बता दे जावे बड़ी पूजा
0: कहा से टपक पड़ा तो क्या हैरानी है अरे नौकरी चाकरी अरे धन दौलत अरे सुंदर सी दुलैया तुझे भी मिल सकत है बड़ी पूजा की विधि लगा बड़ी पूजा की
2: काए कूड़े बाबा महाराज जब बड़ी पूजा कहा तो ना जो तो बताओ जाए हमें जब बड़ी पूजा का कहा हाँ नारियल जरूर चढ़ा सकत महाराज नारियल की गुंजाश तो है और कछु की नहीं है महाराज
0: का नारियल तुझे बलि लगने बलि
1: है बलि महाराज काहे की बलि लगने थे
0: अरे बुकरा की अरे बुकरा की और काय की बलि
1: काय कूड़े बाबा एक आध उड़ी उड़ी छिरिया ना चले छिरिया
0: नहीं नहीं बुकरा बुकरा चलेगा बुकरा
2: काय कूड़े बाबा बुकरा जवान चलेगा बूढ़ो
0: देख कूड़े बाबा की परीक्षा दे रहा है तू अरे बूढ़ा नहीं नया बुकरा नया
1: महाराज नौ तो ठीक है करिया भूरो सफेद चितकबरा कैसो चले है बुकरा।

0: बाबा,
1: ए कूड़े बाबा, बहुत देर हो गई, सुनत सुनत, ए सुनो मत, अबे पुलिस थाने ले चल भी, पुलिस थाने
0: हमें तैयारी कर लो, पुलिस थाने चल भी तुम,
1: पूजा को प्रबंध हमें नहीं करने, तुम थाना चल भी को प्रबंध करो, बहुत देर हो गई तुम्हारे
0: कूड़े बाबा, जो बलि लेबो चढ़ावो सामाजिक और कानूनन अपराध है, अरे जमानत न हुई कूड़े बाबा, कूड़े में धरे दिखे हो, कूड़े में को की हत्या करके कब हम कोखा शांति आज लो मिली है,
1: कूड़े बाबा बाबा सीधे मन से चलो, नहीं तर मैं देखा भी हूं डेढ़ बाबा का कौन वाले बाबा लगाए फरा ढोंगी बाबा है, पकड़ो
2: अरे बस बस
1: चलो थाना चलो सीधे,
2: बस बस भैया बस, अरे तुम औरे आओ हटकन चटकन, आर आर आर आंखें कड़ियाई मोरी दो, मैंने ना सुनो हतवा बैलो के बड़े उम्दा काम करे थे, नोनी सलाह दे मुखा क्षमा कर दो,
0: हटकन
2: चटकन आज से बलि नारियल की चढ़े नारियल की, और कछु की बलि ना चढ़े, मुहा क्षमा कर दो, बोलो कूड़े बाबा की, बोलो कूड़े बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की।
3: हाँ अटकन चटकन, तुमने साचिया कही थी कि जे सब ढोंगी आए ढोंगी,
0: पहले जो बता भूआ घरे चल के दवाई खे हो के ना खे हो।
3: हाँ, बेटा हरो, अब हम तुम्हारी बिल्कुल बात मान है, डॉक्टर को दिखवा है और चल के हम दवाई खे हैं, चलो जब हम साचे हो पे हैं, अब हमारी बिल्कुल समझ में आ गई बात, चलो बेटा हरो अब घर चलिए,
0: बाबा ठीक हो गए, फूआ भी ठीक हो रहे,
4: इंजेक्शन भी लग गए हैं, सब ठीक हो जाए।

तो अतः आपको यह जानते ही हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कम उपयोगी वाले जो हमारे फलदार पौधे हैं, जिसमें आंवला, बेर, बेल, फालसा, बारबडास चेरी, चिरौजी, महुआ इत्यादि ऐसे फल हैं जो कि उच्च पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ज्यादातर माने जाते हैं, जो कि हमारे लोकल के जो किसान भाई हैं वह उसके बारे में उतना नहीं उनको ज्ञात होता है। और उस हम फलदार पौधे को एक उपयोगी फल के रूप में आधुनिक बाग के रूप में हम उसको लगा के ज्यादा से ज्यादा उससे इनकम या आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमें यह पता होना चाहिए कि जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें कैसे फलदार पौधों का चयन करना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा कम वर्षा और जहाँ की मिट्टी कम उर्वरता वाली है, तो उसमें हमें ऐसे फलदार पौधों का चयन करना है जिसमें कि यह सहन क्षमता ज्यादा हो। दूसरा, हमें ऐसे फलदार पौधे का चयन करना है जो कि गहरी जड़ाई जड़ में जाने की क्षमता रखते हों। तीसरा, हमें ऐसे फलदार पौधे का चयन करना है जो कि वसा कवर वसा युक्त हों, उसके जो कवर बाहरी भाग हों। चौथा आपका नेक्स्ट है कि हमें ऐसे फलदार पौधे का चयन करना है जो कि छाया नुमा, जो कि आपका मल्चिंग कवर काम करे, जो कि पौधे के नीचे। तो इसमें सर्वप्रथम हमें बाग लगाने हेतु जो योजना बनाना है उसमें मुख्य बातें हमें ध्यान देने के है। सर्वप्रथम उसमें है स्थान का चयन, हमें ऐसे स्थान का चयन करना है जहाँ पर पहले बाग लगा हुआ है, और बाग ऐसे जगह हमें लगाना है जो कि आपके बाजार और प्रसंस्करण यूनिट के नजदीक हों, जिससे कि आपका जो फल है वह तुरंत तुड़ाई के उपरांत उसको हम बाजार में आसानी से तौर पर हम भेज सकें और शुद्ध आपका फल भी बिक जाए साफ सुथरा। और दूसरी चीज, अगर आपका फल नहीं बिकता है तो उससे हम प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो कि आपका अचार, चटनी, मुरब्बा, जैम इत्यादि ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हम बना के बाजार में हम बेच सकते हैं। दूसरा चीज, आपका ऐसे फलदार पौधे का चयन करना है जिसमें सिंचाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। अतः आपको यह पता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र कम वर्षा वाली जलवायु माना जाता है, तो अतः हमें ऐसे क्षेत्र में कम पानी की आवश्यकता वाले पौधों का चयन करना है, तो जिसमें हम कम पानी के साथ साथ पानी के बचत के रूप में हम आज के आधुनिक रूप में जो कि ड्रिप टपक विधि जो सिंचाई होती है उसका उपयोग हम करके ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम जल का संचय और जल का बचत कर सकते हैं पौध या बाग लगाने में। और दूसरा नेक्स्ट चीज है कि हमें ऐसे फलदार बिच्छों की किस्मों का चयन करना है जो कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए उपयोगी माना जाता है, और इसमें आपका जैसे आम के रूप में अगर हम लगाना चाहते हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा ऐसे इत्यादि हमारे किस्म हैं जिसको हम लगा सकते हैं। अमरूद के रूप में इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, यह सब ऐसे किस्म है जो कि हम यहाँ लगा सकते हैं। आंवला में नरेंद्र आंवला है, बेर में है आपका बनारसी कड़का, उमरान, अंजीर है आपका दिनकर है, पूना अंजीर है, खजूर भी आप लगा सकते हैं। और नए किस्म के रूप में हम जो इस समय बुंदेलखंड क्षेत्र में एक अनूठा फल के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं वह आपका ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी है। ड्रैगन फ्रूट यह बहुत ही हार्ड पौधा है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा तापमान और कम से कम पानी की आवश्यकता होती है, उसको लगा के हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि झांसी जैसे क्षेत्र में आपका स्ट्रॉबेरी की खेती भी अच्छा माना जा रहा है, जिसमें कि आपका स्वीट चार्ली, विंटर डान और चैंडलर जो तीन किस्म है उसको हम यहाँ पर लगा के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें कोई भी फल लगाने के लिए एक फलदार बाग बनाने के लिए उसमें हमें रेखांकन विधियां या रेखांकन की आवश्यकता होती है। अतः हम बाग को चार प्रकार विधि से लगाते हैं, जिसमें पहला है आयताकार, दूसरा है वर्गाकार, तीसरा है पूरक विधि, चौथा है बाड़ पक्ति विधि। तो जिसमें आपका आयताकार, वर्गाकार ये सब पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, इसमें आयताकार बराबर है, वर्गाकार में पंक्ति से पंक्ति कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। और
रेखांकन के बाद जो हम वृक्षरोपण करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वृक्षरोपण हम कब करें, कितना दूरी में करें, कहां करें। तो इसमें सबसे मुख्य बात, हमें ऐसे स्थान का चयन करना है जहां की बाजार के नजदीक हो, प्रसंस्करण यूनिट के नजदीक हो, और हमें जो बाग तैयार करना है, बाग तैयार करने के पूर्व

0: हाँ देखो भैया, अबे अपन सभी जने सुन रहे थे धारावाहिक अटकन चटकन भाग 3 पुनः प्रसारण। और अब लेके चलते हैं पंचन खां एक वार्ता को। वार्ताकार विजेंद्र कुमार सिंह से सुनत हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक विषय पे जा वार्ता। तो पंच सुनो।
1: किसान भाइयों को नमस्ते और सूत्रागढ़ को भी। मैं आप लोगों के समक्ष बुंदेलखंड क्षेत्र में आधुनिक फल उत्पादन तकनीकी के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड एक शुष्क जलवायु, कम वर्षा और पथरीली मिट्टी के लिए जाना जाता है। और यहां पर हम फल उत्पादन के रूप में अगर आधुनिक दिनचर्या न अपनाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन या ज्यादा से ज्यादा इनकम जरिया नहीं बन पाएंगे।

0: में जो कि समर ग्रीष्म काल में हमें मिट्टी की खुदाई करना होता है किसी भी बाग को लगाने के लिए, और मुख्यतः हम जो मिट्टी खुदाई करते हैं वह गहराई में अच्छा करें, अच्छी चौड़ाई में करें, न कि फावड़ा या कुदाल से करें। किसी भी बाग को आप फावड़ा कुदाल से नहीं लगा सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपको आम लगाना है या अमरूद लगाना है, उसका 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर वर्गाकार के रूप में उसका गहराई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है इतना हमें रखना है, और वो भी ग्रीष्म काल में, और उसको हम वर्षा काल के पहले तक उसको हम वैसे छोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें जो भी जीवाणु है वह गर्मी की वजह से उसमें मर जाएं। और जैसे ही बरसात शुरुआत होती है, बरसात के पूर्व हम उसमें अच्छे ढंग से गोबर खाद जो भी आपका पोषक तत्व है ऑर्गेनिक जैविक खेती के रूप में उसको हम उसके मिला करके उसको हम बारिश के पहले उसको हम भर देते हैं जो भी गड्ढा रहता है। और जैसे हमारा बारिश शुरुआत होती है उसके बाद हम अपना पौधा लगाते जाते हैं, और उसमें अच्छा से अच्छा आपका उत्पादन, अच्छा से अच्छा आपका जो कि पौध सहन शक्ति अच्छा रहता है। नेक्स्ट आपका है पौधे की जो मूल वृंत है आपका इस क्षेत्र के लिए, उसमें कटाई छटाई की बहुत नितांत आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो बेर है वह सबसे ज्यादा छटाई के कटाई की आवश्यकता होता है, जून माह में हम उसको करते हैं, जिसमें कि जो नई नई शाखाएं निकलती हैं उसी में से सबसे ज्यादा आपका फल प्राप्त होते हैं। तो इसलिए बेर है आपका, अंजीर है, यह सब आपके जो कटाई छटाई के मुख्य रूप से स्रोत हैं, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा आपका लाभ प्राप्त हो सके। तो अतः आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें जो फल उत्पादन के लिए अपनाई गई नई तकनीकी है और उसमें प्रमुख खेती कौन कौन से हो रहे हैं, आपको यह जानते हैं कि बुंदेलखंड हमारा 7 जिला उत्तर प्रदेश और 6 जिला मध्य प्रदेश के पूरा माना जाता है, और यह शुष्क जलवायु के रूप में है। तो इसमें आपका सर्वप्रथम जो उत्पादन तकनीकी अपनाना चाहिए उसमें है आपका जल संरक्षण। मतलब जल संरक्षण यह है कि भाई आपका जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ कम वर्षा क्षेत्र माना जाता है, इसके रूप में हम यहाँ पर सिंचाई के रूप में ड्रिप सिंचाई या टपक विधि द्वारा सिंचाई करके हम ज्यादा से ज्यादा जल का संचय कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा है आपका जैविक खेती। जैविक खेती आज के समय में हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में है, जैविक खाद ज्यादातर आपको उपलब्ध है, और इसमें कार्बनिक खाद कम उपयोग करके हम जैविक खाद के रूप में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तीसरा है आपका मल्चिंग। आपको यह पता है कि हमारा जो सतह है, पौधे के नीचे वाला सतह है, वहां से आपका वाष्पोत्सर्जन मतलब सूर्य द्वारा जो आपका पानी है वह वाष्पोत्सर्जन द्वारा इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको हम बचाने के लिए मल्चिंग का काम करते हैं। अब मल्चिंग हमारा जैविक मल्चिंग है, अजैविक मल्चिंग है। जैविक मल्चिंग में हम जो पुआल होता है, घास होता है या सुगर केन के जो होता है उसको हम लगा देते हैं, उससे हमारा जल मल्चिंग काम होता है। अजैविक मल्चिंग में हमारा प्लास्टिक के द्वारा अजैविक मल्चिंग किया जाता है। हमारे नींबू वर्गी में किन्नो और मौसमी, ये ऐसे दो प्रजाति हैं, दो फल हैं जो कि हम कम जलवायु पानी के और कम देखभाल की आवश्यकता में ही ज्यादा से ज्यादा आमदनी या उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अंत में आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यह सेबों के लिए अब प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ भी सेब लोग लगा रहे हैं। एक हरमन 99 एक ऐसी किस्म है जो कि आपके 40 से 50 डिग्री सेल्सियस में भी उपयोगी माना जा रहा है। तो इस क्षेत्र के लिए हमारे जो फलदार वृक्ष हैं उसको हम आधुनिक रूप में लगा के हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करके अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, और जिसमें हमारे जो कम उपयोगी फलदार पौधे हैं उसका भी हम कमर्शियल के तौर में आय के रूप में उसको हम बागानी के रूप में लगा के उसको हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यही आधुनिक फल उत्पादन तकनीकी क्षेत्र में बुंदेलखंड में हमारा यही आज का विचार है। इसके लिए आपको धन्यवाद।
1: हाँ देखो भैया, अब सुन रहे थे अपन वार्ताकार बिजेंद्र कुमार सिंह से बुंदेलखंड क्षेत्र में आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक विषय पे जब वार्ता। और देखो अब बेरा भैया आज की सीख की विषय है छाती ठोकना। एक अर्थ है आत्मविश्वास के संगे चुनौती स्वीकार कर लेवो, कोनो काम में साहस दिखावो, दावे के संगे कहबो और दूसरे शब्द में अपनी वीरता को प्रकट करवो। जो मुहावरों निडर होके कोनो काम करवे में अपनी ताकत को प्रदर्शन के संदर्भ में प्रयोग करो जात। अगर ईको एक वाक्य के रूप में प्रयोग करके दर्शाओ जाए तो कहो जा सकत कि अपने देश के वीर सैनिक दुश्मन के सामू छाती ठोक के ठाड़े रात। और देखो भैया ये जा तो हती आज की सीख, और अब चलत चलत सुनत हैं एक ठैया बिलवारी चंद्रभूषण पाठक।

हाँ देखो भैया, यही बिलवारी सुन रहे थे अपन चंद्रभूषण पाठक जी से, और यही बिलवारी के संगे आज के कार्यक्रम को समय पूरा हो गए। तो चलत चलत बताने पंचन काल के कार्यक्रम। काल हमारे पंच सुने सुनो गीत गुनो बतकाओ, जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कंपेयर्ड कार्यक्रम प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति जो की हुए संगे वार्ता हुए किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान, वार्ताकार हुए डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी और संगे आज की सीख को विषय हुए छाती पे पथरा धर के, और भैया अपनो तपनो बतकाओ हुए। तब तक के लाने पंचो पंचन से लेते हैं अनुमति। पंचो राम राम।

0: अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। सुर्खियों में ये कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: बड़ी खुशी हुई।
2: शुभमय, आज के कैबिनेट मीटिंग में जैसा कि हमने देखा, कई ऐसे निर्णय लिए गए और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आगे आने वाले वर्षों में या कहें समय में एक विकसित भारत को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है फॉर द अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इन्होंने बात की है कि वो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही

0: महत्वपूर्ण एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी। तो कैसे आप देखते हैं, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हमें पता है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि चारों ओर पूरे देश में खास करके, और उड़ान के बारे में भी हम जानते हैं, एयर कनेक्टिविटी के ऊपर काफी बल दिया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको?
1: जैसे आप सही कह रहे थे जी कि ये सिर्फ वेस्टर्न इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया में आप जैसे जानते होंगे कि रेलवे के लिए नागपुर एक ऐसा जगह है जहां पे भारत के सारे रेल लाइन उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण से आके मिलते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट है। इसीलिए अगर हम जिससे कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का आवागमन अगर हम देखें भारत के किसी जगह पे, तो इस क्षेत्र से वो जरूर होके गुजरता है। इसीलिए ये वाला सेक्टर को और ये वाला सेक्शन को कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी महत्व दिया गया है और रहा भी है, पुराने दिनों में भी और आज के दिन में तो खासकर। तो हम जब कहते हैं कि भारत में सारे प्रोडक्ट्स के मूवमेंट होने चाहिए, इजी मूवमेंट होने चाहिए, तो नागपुर अपने आप में एक चुनिंदा जगह बन जाता है, जिसलिए नागपुर का जो एयरपोर्ट है खासकर कार्गो एयरपोर्ट, वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। आपको पता ही होगा कि ये इंटरनेशनल बोइंग कंपनी ने नागपुर को ही चुना है अपने मेंटेनेंस ऑपरेशंस एशिया में और साउथ एशिया में खासकर चलाने के लिए इसी जगह पे। तो ये एक अपने आप में अपने एक एविएशन हब के रूप से बन गया है
0: जी।
1: और जो आज के कैबिनेट का जो अप्रूवल है उसमें भी इसकी रिकग्निशन है कि एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट जो नागपुर में बन चुका है, 2009 से ये जॉइंट वेंचर कंपनी बना था और तब से ये चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का और इस एयरपोर्ट का, इन सब चीजों को मिलाकर बहुत ही सिग्निफिकेंस है। हालांकि हम पैसेंजर एयरपोर्ट की बात करते हैं और लोग जल्दी देखते हैं कि जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट में मिलियंस ऑफ लोग मूव करते हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो नागपुर एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट है।
0: जी शुभ मैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उत्कृष्ट कह सकते हैं ये उदाहरण है। आइए सुनते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा इस मौके पर।
2: पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीजें।
0: और हम बात करते हैं, अब कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है आज, न्यूनतम समर्थन मूल्य का 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए विपणन वर्ष 2026-27 को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि हमें पता है कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें मुख्य तौर पर किसान हमारे रेनी सीजन पर, वर्षा पर कितना ज्यादा वो निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और कुछ जो डिसीजन लिए गए हैं इसमें, उसमें सबसे अधिक जो है वो जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है फॉर द सनफ्लावर सीड, जो कि लगभग 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और उसके अलावा और भी हम देखेंगे कॉटन के लिए और सेसमम के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और 500 रुपए प्रति क्विंटल क्रमशः। तो इसके अलावा और भी कुछ हैं, 14 जैसा कि हमने पहले बात की कि 14 क्रॉप्स हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है, तो कैसे आप इसको देखते हैं और किसानों को कैसे इससे लाभ मिलता हुआ आप देख रहे हैं?
1: खासकर अब ये चीज हम जानते हैं कि इस साल वैसे ही पूरी दुनिया में काफी अफरा तफरी मचा हुआ है और सारे दुनिया में इन्फ्लेशन और डिस्टर्बेंसेस बहुत भारी मात्रा में आ गया है। तो वहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से ही नहीं साथ में इनकम का भी रचना बहुत मायने रखता है कि क्योंकि हमारे करीब 48% हमारे वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में बने हुए हैं, जिसका काफी ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर में ही रहते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए एक अगर हम देखें कि कितना उनके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, उनके लिए कितना इनकम जनरेटिंग रहेगा उनका जो काम काज है, तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को सरकार ही खरीदेंगी, लेकिन जैसे ज्वार बाजरा रागी मेज अरहर मूंग इन सभी चीजों में बिजनेस पीपल आके ही खरीदते हैं, लेकिन जब रेट एक सरकार की तरफ से तय हो जाता है कि इतने रेट से अगर कम हुआ तो सरकारी एजेंसियां वो चीजों को खरीद लेंगे, तो एक भरोसे का सिक्वेंस बन जाता है फार्मर्स के लिए, उनके लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि इतने रेट में हमको मिलेगा।

0: और ये इसका घोषणा होना सही समय पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनको ये प्राइसेस आगे चल के क्या प्राइसेस रहेंगे उस प्राइस का एक अंदाजा बन जाता है, एक क्लैरिटी मिलती है। जैसे आप सनफ्लावर की बात कर रहे थे, साथ में ज्वार की, पैडी वगैरह का, तो ऑफकोर्स है क्योंकि पैडी भारत की जगह पे पैडी का कल्टिवेशन होता है,
1: बिल्कुल
0: बाजरा है, लेकिन साथ में जो दाल, दाल के जो प्रोडक्शन है, दाल का जो उनका जो रेट्स है, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर क्या रेट बनता है, उनको किस रेट में दिया जाता है
1: जी।
0: तो इन सब चीजों का जो रेट का जो राइज है, कितना परसेंटेज किया जा रहा है, उसका कितना बारीकी से करते हैं। खासकर मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का दृष्टि आकर्षण करूंगा कि हमारे सारे श्रोता के में खासकर एक बहुत बड़े जो फार्मिंग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसका अनाउंसमेंट और इसका प्राइस क्या बना बहुत ही मायने रखता है। ये कितने परसेंटेज राइज इस साल दिया गया, ये तुलना अगर करें
1: जी जी,
0: तो सरकारी क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं
1: जी,
0: उनके पे कमीशन के अवार्ड से ये इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के पैमाने के ऊपर, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर, उनके लाइफ के, जैसे कॉटन के प्राइसेस जो है, इन सभी चीजों के प्राइसेस कितना बनेगा, इससे हमारे कृषि क्षेत्र कितने शक्तिशाली रहेंगे, उसमें कितने लोग काम कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, वो सब इससे जुड़ा हुआ है।
1: जी जी शुभ, और आइए सुनते हैं मंत्री महोदय ने क्या कहा इस अवसर पर।
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए, और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया, उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं, उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया आज के कैबिनेट मीटिंग में, वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, जिसका कि वित्तीय आउटले अगर हम कहें तो 37,500 करोड़ रुपए है। तो शुभ में, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपने भी अभी चर्चा किया पीछे की, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, एनर्जी क्राइसिस खास करके अगर देखें, तो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर अगर हम इसको देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आइए सुनते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा इस विषय पर।
2: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है, और बहुत ही सामूहिक फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम, बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपरली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे, हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप, और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
1: तो एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। शुभ, कैसे देखते हैं आप इसको आने वाले समय में, जैसा कि मंत्री जी बात कर रहे थे, ये एक काफी बड़े तौर पर और बड़े पैमाने पर सामने उभर कर आ सकता है एज एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से।
0: मैं सबसे पहले बता दूं कि कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है। कि ये बेसिकली एक कोल से, हालांकि कोल और क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो मॉडल्स वो एक ही चीज से बनता है। कोल गैसिफिकेशन का मतलब है कि इसमें से एक मिक्स्ड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, व्हाटएवर, इन सबको यूज करने से ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे बेनिफिट मिलता है। तो हम नेचुरल गैस का भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात की बात कर रही है, हम इम्पोर्ट में, ट्रेड ऑफ हॉर्मोन्स में, अफरा तफरी

0: वजह से गैस नहीं आ पा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए हर तरीके में ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे ही काम आ सकता है कोल गैस। तो ये कोल गैस जो है इसका टेक्नोलॉजी पता है, इसका टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए हम सोच रहे थे कि करें ना करें। खासकर कुछ महीनों पहले तक चल रहा था कि कोल को किस तरीके से काम में लाया जा सकता है, एट ऑल करना चाहिए या नहीं। हालांकि एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोल को अगर यूज करना है और कोल गैस बनाकर, तो वो एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि कोल से जो उत्पन्न होता है जो पोल्यूशन वो काफी हद तक उतर जाता है कोल गैस बनाने से। और जैसे मंत्री जी भी बता रहे थे कि कोल का हमारे पास चूंकि डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा दिया हुआ है, हमारे पास है देश में, तो हम अगर इसका इस्तेमाल करें तो इससे हम अपने आप को जैसे कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन एनर्जी में पा सकते हैं। और सेल्फ सफिशिएंसी इन एनर्जी अभी इस दुनिया में ये 21वीं सदी का एक मूल मंत्र बन गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनर्जी, इस दोनों का मिश्रण देश के लिए एक जैसे कहते हैं एसेंशियल चीज बन गया है। अपने निर्भरता, अपने अपने इकोनॉमी को आगे तेजी से ले जाने के लिए, सब कुछ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी, जी,
0: तो इसमें ये जो 37,500 करोड़ का जो कैबिनेट का जो अप्रूवल है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत सारी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट्स में आने के लिए सुविधा होगी। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि आपको हम एक सीड कैपिटल देंगे, एक सपोर्ट देंगे, इसके बेसिस पे आप अपना काम आगे ले जाइए, और अगर हम आगे अगर चले तो दिस गुड बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर।
1: जी जी जी, शुभ है। और एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में आज, गुजरात के अहमदाबाद से ढोलेरा तक एक सेमी हाई स्पीड डबल रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट भी जिसको मंजूरी दी गई, जिसका कुल लागत मूल्य 20,667 करोड़ रुपए है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यूनिक भी है, इसलिए कि ये देश का ये पहला ऐसा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये किया जा रहा है। हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से रेलवे का जाल नेटवर्क जैसा बिछाया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है जो इस मंजूरी मिली है, ये कैसे देखते हैं आप इसको?
0: इसको अगर आप उस अगर आप लिंक करें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ढोलेरा से आ रहा है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है। वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेस सेटअप कर रहे हैं। तो ढोलेरा से अहमदाबाद का कनेक्टिविटी हाई स्पीड होना जरूरी था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अहमदाबाद से बॉम्बे तक का बुलेट ट्रेन बन रहा है, तो वो बुलेट ट्रेन से अगर हम मुंबई से अहमदाबाद लोगों का जैसे कनेक्शन रहेगा, साथ में उनको एक इमीडिएट कनेक्शन जरूरत पड़ेगा ढोलेरा तक जाने का, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र की कंपनियां इस रीजन में अपना इन्वेस्टमेंट सेटअप कर रहे हैं। तो ये वाला एक जिसे कहते हैं मिसिंग लिंक या था, जो अभी जिसका पूर्ण किया जाएगा, तो इसका तो बहुत ही इसका कितना महत्व है वो आने वाले दिनों में ही बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा जो रीजन है इस रीजन में हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बहुत जरूरत है, जिसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है, और इसलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: शुभ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए हमारे श्रोताओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
3: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म निशान से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीत गुलशन भावरा का, संगीत राजेश रोशन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म निशान का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, गीत गुलशन बावरा का था, संगीत राजेश भूषण का। श्रोताओं, आज रात मनभावन 10 बजे से 11 बजे तक रहेगा, जिसमें हम आपको आपकी पसंद पर गीत सुनाएंगे और आप अपनी पसंद भेज सकते हैं गीत के अनुसार। जो भी मेल हमें प्राप्त होंगे गीत के साथ, उन्हीं का नाम इसमें शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम का पहला गीत रहेगा फिल्म दर्द से, न जाने क्या हुआ, लता मंगेशकर की आवाज के साथ। इस पहले गीत के लिए अपनी फरमाइश भेजिए ईमेल के द्वारा, इनको हम शामिल करेंगे और उसी कार्यक्रम के दौरान हम कार्यक्रम के अगले गीत भी बताते चलेंगे, ताकि आप अपने मेल भेजते रहें। और ध्यान रहिए कि उन्हीं श्रोताओं के ईमेल शामिल किए जाएंगे जो कि कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और उस गीत का नाम लिखेंगे जो कि बजने वाला है या बज चुका है। चलिए, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत है दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत साहिर का और संगीत रवि का।

आइए अब सुनते हैं फिल्म इज्जत का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत सहर लुधियानवी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए महबूब की मेहंदी। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIRF पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 हो रहे हैं। अगले कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है।

0: और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्री

0: मंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपये और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रूपये की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with any

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली

0: मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, इनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था हैं जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है

0: उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है, और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सके। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो है लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है,
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल।

और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है

0: पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली, चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है, और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है, और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हरेक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल

0: है जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है। आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। LPG में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज, वो मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। CBG एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो CBG का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन कि सारा कंट्री लकीली CGD नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही

0: जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहे, तो
1: जी
0: मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रखकर चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है। और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा। तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका

0: शीघ्र जमन होगा और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मनभावन, और आज का मनभावन लेकर हाजिर है आपका मित्र समीर गोस्वामी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दर्द से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत नक्श लायलपुरी का है और संगीत खयाम का। इस गीत को जो पसंद करने वाले पत्र हमारे पास आए हैं वो इस प्रकार से हैं। मोहल हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, हिना कौसर और साजदा रानी। जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी, शिवरीमती पूजा तिवारी, राम बिहारी शास्त्री, आशा तिवारी, राजा भैया, अभय और कार्तिक तिवारी के अलावा उनका समस्त परिवार। ग्राम टोरा पोस्ट महेबा जिला पन्ना मध्य प्रदेश से लक्ष्मीकांत तिवारी, नीलेश तिवारी, मनु तिवारी और दिव्यांश तिवारी। लव रेडियो श्रोता संघ ग्राम मवैया इमलिया जिला छतरपुर से लवकेश कुमार राजपूत, सर्वेश राजपूत, भगवान दास राजपूत और इनके मम्मी पापा। जिला रायसेन खापड़खेड़ा से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू और आरती ममता गोमती। इस कार्यक्रम के लिए, इस गीत के लिए अपनी फरमाइश मेल पर भेज सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम का अगला गीत हम लेकर आएंगे फिल्म आराधना से, कोरा कागज था ये मन मेरा, उसके लिए भी आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं। जो भी गीत आप लिखेंगे उसकी फरमाइश में आपका नाम पढ़ा जाएगा, बिना गीत के कोई भी नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

दर्द फिल्म के इस गीत के लिए मेल पर जो पसंद आई है वो है ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। इसके अलावा लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जो पत्र मेल लिखा है वो लिखा है जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका, इनके साथ ही अस्पताल रोड के लिए विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना मानवी और तन्वी गौहर ने ये मेल लिखा है। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म आराधना से, इसके लिए भी आप मेल लिख सकते हैं। जो पत्र आए हैं वो ये है, ग्राम व पोस्ट बंधी कला जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामचरण, प्रकाश, किशोरी, जसपाल, अंशुल, कुमारी बनु, श्रीमती बेनीबाई और सुनीता। जय बगाज माता रेडियो श्रोता संघ कुंडेश्वर के पास ग्राम हरपुरा मढ़िया पोस्ट खिरिया नाका जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इंद्रपाल सिंह राजपूत, देवी सिंह, चंद्रपाल सिंह, उम्मेद कुंवर, उर्मिला, नेहा, अंकिता देवी, अबिता देवी, आक्षी देवी, ऑरेंज सिंह और अभिराज सिंह राजपूत। ग्राम कनाय और करतल पोस्ट पोंगरी तहसील नरेनी जिला बांदा उत्तर प्रदेश से सत्यप्रकाश अहिरवार, ठाकुर दीन, माता दीन, रामहित, ओम प्रकाश, रामपतन, सत्यप्रकाश, रविशंकर, राजकुमारी, किरण, बबली, ज्योति, अर्चना, प्रभा, रचना और दीपा। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आराधना का गीत, इसके लिए आप मेल लिख सकते हैं। गीत के बाद हम आपको आपके मेल सुनाएंगे। इसके बाद हम जो गीत लेकर आए हैं आएंगे वो होगा एक फूल दो माली फिल्म का, सैया ले गई जियत। बहरहाल सुनते हैं आराधना फिल्म का गीत।

आराधना इस फिल्म के इस गीत के लिए मेल जो आई है पसंद की, वह अनारकली बाजार जगराव से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक के। कार्यक्रम का अगला गीत है एक फूल दो माली से, आशा भोसले की आवाज है, प्रेम धवन का गीत और रवि का संगीत पसंद आप सभी की। टीकमगढ़ से ढोंगा से जो लिखने वाले हैं वो प्रांजल और शिवांशु प्रजापति। कुशवाहा रेडियो श्रोता संघ मोहाल दीवानपुरा राठ जैला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से विनोद कुशवाहा, नीरज मयंक, घनश्याम सावित्री देवी, प्रेम रानी, दिव्या नीलम देवी, छोटा बाबू कुशवाहा। ग्राम तरसमा मुरैना से हरविलास सिंह तोमर। हनुमान रेडियो भरुआ सुमेरपुर से ब्रजेंद्र कुमार धुरिया, श्रीमती संगीता धुरिया, लाला सन्यासी, कृष्ण कुमार गुप्ता, अविनाश कुमार धुरिया, अमन कुमार धुरिया, दीप शिखा धुरिया और संदीप धुरिया। एक फूल दो माली के लिए एक मेल भी आई है, ये मेल है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। ये किशनगंज बिहार से जो मोहनदास और आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया और अनुराग मोहन, इन्होंने पिछले गीत को भी पसंद किया था और इस गीत के लिए भी इन्होंने अपनी मेल भेजी है। एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत हम सुनते हैं, इसके बाद हम लेकर के आएंगे रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत मैं ना भूलूंगा। ये गीत के बोल रहेंगे, अपने मेल जो है आप लिख सकते हैं इस गीत की पसंद के लिए।

इस गीत को पसंद करने के लिए मेल लिखी है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने।

एक और मेल आई है इस गीत की पसंद के लिए, वो है रोहित दास चौक पंढरपुर सिटी से, प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोट के। कार्यक्रम का अगला गीत है रोटी कपड़ा और मकान से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, गीत संतोष आनंद का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद आप सभी की। विजयनगर देरी रोड छतरपुर से वसीम अहमद खान अश्क। राजपूत कृषि फॉर्म ग्राम मिर्तला महोबा उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत। अशोकनगर से लोकेश तिवारी और चंद्रभान तिवारी। सत साहिब रेडियो श्रोता संघ ननौरा महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी कुमारी आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा। इस गीत के लिए अपनी मेल भी आप लिख सकते हैं। आपसे एक गुजारिश रहेगी, एक ही मेल लिखें, बार बार मेल लिखेंगे तो वो भी दिक्कत होती है क्योंकि और श्रोताओं के नाम भी पढ़ना होते हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान का आप गीत सुनिए, इसके बाद हम लेकर आएंगे नागिन फिल्म का गीत, तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है। हालांकि रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के लिए एक और मेल आई है, ये फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है नागिन फिल्म से, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीत वर्मा मलिक का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद आप सभी की। नरसिंहगढ़ पुरवा छतरपुर से दयाशंकर कुशवाहा, ग्राम कुड़ेला पोस्ट सिमरिया तहसील ग्वारा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हल्का यादव, यादव बंधु बस स्टैंड लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से राजेश यादव, राम अवतार, दीपक, यदुवीर, राधिका और राम गोपाल जी, प्रेम रेडियो श्रोता संघ ग्राम बनगांव तहसील पटेरा जिला दमोह से प्रहलाद यादव, राकेश यादव, मनोज यादव, सुषमा यादव, संगीता यादव, गीता यादव, कविता यादव और गोविंद यादव, ग्राम गुना वार्ड नंबर 15 जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजाराम अहिरवार, राधेलाल अहिरवार, शारदा, दीपा, बेनीबाई, सीमा, निशु, प्रवीण अहिरवार। इसके अलावा मेल जो आई है वो आई है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो की। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नागिन से। इसके बाद हम जो गीत लेकर आएंगे वो रहेगा अनुराग फिल्म का, नींद चुराए चैन चुराए। इसके लिए आप अपने मेल लिख सकते हैं, नागिन फिल्म के इस गीत के लिए भी आप मेल लिखें, आप मेल लिखते हैं आपका पत्र मेल शामिल किया जाएगा।

कार्यक्रम का अगला गीत फिर मन राग से लता मंगेशकर की आवाज में, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत सचिन देव बर्मन का। इसके बाद जो हम गीत लेकर के आएंगे वो रहेगा दुल्हन वही जो पिया मन भाई, गीत रहेगा सजना वो सजना। बहरहाल अनुराग फिल्म के गीत के लिए पसंद के पत्र जो मिले हैं वो ये है। जंटपुरा पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवीदी नहरवार, सुनीता देवी, दिनेश कपिल, पूजा देवी एवं उनका समस्त अहिरवार परिवार। जय श्री राम रेडियो श्रोता संघ से हरिराम अहिरवार, रवि, सुनील, प्रमोद और उनके मम्मी पापा, आप सभी सिंचाई कॉलोनी अनगढ़ की टोरिया छतरपुर मध्य प्रदेश से। ग्राम दुर्गापुर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मानसिंह सेहुलिया, मीना सेहुलिया, उनकी बिटिया वैशाली, सत्येंद्र कुमार, हरविलास सेहुलिया। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं अनुराग फिल्म का गीत।

घनश्यामदास रजक, कालीचरण रजक और उनका परिवार। ग्राम पोस्ट गौना, कुसमार थाना सौजना, तहसील मेहरौनी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, रामदेवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनलाल नामदेव, चाहना नामदेव और आकाश नामदेव। तो आप सभी की पसंद पर दुल्हन वही जो पियामन भाई फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत रहेगा खानदान फिल्म का। ये मुलाकात एक बहाना है। दोनों गीतों के लिए आप अपनी मेल लिख सकते हैं और मेल भेजिएगा, हम इस कार्यक्रम में उसको अवश्य शामिल करेंगे। हमारा मेल आप जानते ही हैं, AIR छतरपुर 1976@gmail.com।

कार्यक्रम का अगला गीत है खानदान फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में गीत नक्शलायलपुरी का, संगीत खयाम का पसंद। ये दो पत्र हैं, दुर्गा चौक रायसेन मध्य प्रदेश से राजू नामदेव, गांधीनगर गुरसराय झांसी से एस कुमार सिरौनिया, श्रीमती मिथिला सिरौनिया, सोनम, नितिन, मुकेश, रजनी, गौरव, रोशनी, नितेश, रितेश, आदर्श, चिंटू और कुमारी सौम्य सिरौनिया। एक मेल भी इस गीत के लिए आया है, मेल लिखा है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर खानदान फिल्म का गीत। इसके बाद हम जो गीत लेकर आ रहे हैं वो है फिल्म आप तो ऐसे न थे का, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म आप तो ऐसे न थे से, गीत निदा फाजली का और संगीत उषा खन्ना का, पसंद आप सभी की। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी आराधना और रोनिका यादव। ग्राम झगराही पाली तहसील कालपी जिला जालौन से रूबी निषाद, अंगूरी, दीपक, रोशनी, हरी निषाद और उनके मम्मी पापा। प्रमलागंज जालोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल और प्रियांश

वर्मा, ऋषि वर्मा। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सरस्वती कॉलोनी जबलपुर से दीपेश, रुचि, आद्या, अथर्व और कमला मिश्रा। यहीं से लिखने वाली श्रोता है रश्मि तिवारी, अमित तिवारी, ओम और राम। बंडा बेलई जिला सागर से पुष्पा तिवारी, गणेश तिवारी, अमित, अंकित, विक्की और अर्पित। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूणत। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति, प्रयाग चौधरी। ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और उनका समस्त परिवार। तो आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं मनहर उदास की आवाज में। फिल्म है आप तो ऐसे न थे।

नागिन फिल्म के लिए एक फरमाइश आई थी, वो फरमाइश थी मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद दसी, पलक लुबना और यश मंसूरी की। आप सभी थे मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से।

0: अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।